फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी

0: दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ये श्लोक है, कलातीतम कल्याण कल्याण कल्पम सदा सद्रसानंददम सदपदज्ञम अनेकाक्षरम निष्कलम निर्मलम तम गणेशम भजे मोदक प्रियांतम। अर्थात मैं उन गणेश भगवान की आराधना करता हूँ जो कलाओं से परे हैं, जो परम कल्याणकारी हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, जो हमेशा सत्चित आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो ओंकार स्वरूप हैं, निष्कल यानी अविभाज्य हैं, अत्यंत निर्मल और जिन्हें मोदक प्रिय है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं। श्री गणेश, श्री गणेश।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 316। सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 4। कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक जुबिन गर्ग पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कहानी रिहाई। लेखिका अलका सिन्हा, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी कर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 11:00 चित्रपट संगीत। 11:30 पर मैटनी शो। इसके अंतर्गत लेखक और शायर आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। संपादक सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान की। दोपहर 1:00 सुरीला सफर। दो बजे त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आज सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता भाग 1। महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। पिटारा में शाम 4:00 बॉम्बे टॉकीज। गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज पहला भाग। संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5:00 छायागीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या रंजन। आपको फिर से याद दिला दे, शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 4। कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7:00 विशेष जयमाला कार्यक्रम निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर केंद्रित होगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8:00 हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी का पहला भाग। वाचन स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। पर आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक जुबिन गर्ग पर, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 10:00 छाएगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 मेटनी शो। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 316।

राज्यसभा में रावण अंगद के पराक्रम का आभास पा चुका था, फिर भी मंदोदरी की समझावन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो कहती रही, जिन्होंने विराध, खरदूषण और कबंद को अपनी लीला से मार डाला, जिसके एक ही वाण से बाली का वध हो गया, हे स्वामी, आप उनकी महिमा को समझने की चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आपका मान और मद सब व्यर्थ है। आप काल के वश में हो गए हैं, इसी कारण आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। मंदोदरी के अनुनय को अनसुना कर रावण सवेरा होते ही अभिमान पूर्वक सिंहासन पर जा बैठा और एक बार फिर वही हठधर्मिता। इधर सुबेल पर्वत पर अंगद श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो रावण राक्षस कुल का शिरोमणि है और जिसके बल से सारा जगत परिचित है। उसके चार चार मुकुट अंगद ने किस प्रकार यहां तक फेंके? श्रीराम की इस जिज्ञासा के उत्तर में अंगद का निवेदन है, हे सर्वज्ञ, वे चार मुकुट राजा के चार गुणों साम, दान, दंड और भेद के प्रतीक हैं, जिनका राजा के हृदय में निवास होता है। किंतु रावण राजा के धर्म से विचलित हो गया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 316।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों हम आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। एक बहुत बढ़िया बात याद आई, सुप्रसिद्ध संगीत शास्त्रज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह जी ने कहा कि खड़े स्वर लेना यानी सुरों की पगड़ी उतार लेना है, किंतु मैं तो यह कहूंगा कि खड़े स्वर लेना स्वरों को निर्वस्त्र यानी वस्त्रहीन कर देने के बराबर है। इसलिए श्रुति मूर्छना एवं माधुरी के परिधान से गायन की प्रस्तुति में शोभा बढ़ती है, यही शिष्टता है जिसे हम अदब कहेंगे। गायन वादन में खेल होना स्तुत्य है, खिलवाड़ नहीं, इसलिए गुरुजनों का सान्निध्य अत्यावश्यक है। संगीत साधना नाद ब्रह्म की उपासना है। हमारे शास्त्रों में भगवान और गुरु का एक स्थान है। जिस प्रकार अलौकिक गुणों से युक्त साकार रूप भगवान को आंख होते हुए भी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि साइट नहीं है यानी विजन नहीं है, तो हम उन्हें निराकार कह बैठते हैं। जिस प्रकार हमें अपने प्राण दिखाई नहीं देते, फिर भी हम अपनी संजीदगी सजीवता का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार स्वर भी दिखाई नहीं देते, किंतु जैसे स्नेह निराकार है किंतु गाय में व माता में निराकार स्नेह से साकार दूध पैदा होता है, जैसे हवा दिखाई नहीं देती किंतु शरीर को लगती जरूर है, बस इसी तरह स्वर भी आत्मस्पर्श करते हैं, छूते हैं, निराकार स्वर ईश्वर की ओर लौ लगा देते हैं, निराकार होते हुए भी अद्भुत साकार सृष्टि करते हैं और आनंद की वृष्टि होने लगती है। अतः स्वर के माध्यम से ईश्वर की उपासना मंगलाचरण है, अर्थात प्रत्येक चरण

हमारा मंगल आचरण है तो सुनिए राक्षसाना में मैं अपनी ही स्वरचित रचना मधुरपिया के उपनाम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह प्रार्थना यानी हमद है।

संगीत केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु प्राणी मात्र जड़ से चेतन तक को अनुप्राणित करता रहा है। इसका सुंदर उदाहरण राग गुजरी टोड़ी की रचना में हम पाते हैं।

0: ताल और तराने की विशेषताएं। इस श्रृंखला का चौथा भाग अभी आपने संगीत सरिता में सुना। इसे प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से पटेल से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ कि विंडो सेक्शन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी और मैसेज देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट है उसने आपकी सारी ब्रीफिंग की।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहार जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The CEPA is expected to create new opportunities in trade in goods and services, investment and other areas of economic cooperation. In a social media post, Mr. Goyal expressed confidence that an early conclusion of the CEPA would help realize the shared vision of significantly increasing bilateral trade and further deepen the India-Canada economic partnership for mutual benefit. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against Reliance Capital Limited, Mumbai, in its former chairman and unidentified public servants, among others, in connection with an alleged LIC investment fraud. The case was registered on the basis of a complaint filed by the Life Insurance Corporation of India, or LIC. According to the complaint, between 2012 and 2018, LIC subscribed to 5 non-convertible debentures worth 3,900 crore rupees issued by Reliance Capital. The funds were meant for general corporate purposes, funding requirements and refinancing of existing debt. India has been ranked first in business climate among 40 plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. US President Donald Trump said that the United States has reached a deal with Denmark to strengthen the American military presence in Greenland, ending months of tension over his repeated calls to acquire the Arctic island. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में 7,400 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी करेंगे वितरित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए कार्यों और प्रयासों की सराहना की। और भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन समेत कई जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रतिभागी प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वीं रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। ये स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की राह आसान होगी, साथ ही कॉलेज आने जाने वाले में भी सहूलियत रहेगी। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह 9 बजे से होगा। गौरतलब है कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से अब तक प्रदेश के 30,000 से अधिक पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के संचालन पर अब तक लगभग 240 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में मध्य प्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं पर उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम काफी गंभीरता पूर्वक देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और अपने राज्य के अंदर भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के, हमारे राज्य में भी इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त स्कोप भी है और इस पर हमने काम भी किया। इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसके आधार पर ये हम इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के निवेशकों को मध्य प्रदेश की पॉलिसी के बलबूते पर इन्वेस्टमेंट के लिए मौका भी देंगे और हमारे राज्य का प्रमोशन भी करेंगे।
0: प्रदेश में कुनू राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 शावकों के जन्म के साथ देश में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। ये शावक भारत में जन्मे मादा चीता KGP-12 के हैं। ये परियोजना के 4 साल पूरे होने के ठीक एक दिन बाद हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भारत में चीता संरक्षण के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कुनो और प्रोजेक्ट चीता की टीम को बधाई दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य ढांचे, चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ सेवाओं और प्रमुख जन स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा भी हुई। श्री नड्डा ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के इस्तेमाल की भी प्रशंसा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रभारी रवि दांगी ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर 2 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम करीब 7 बजे उनका रिसनल पार्क स्थित सभा स्थल पहुंचने का कार्यक्रम है। इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय विकसित भारत एक्सपो 2026 का कल समापन हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक्सपो में विकसित भारत का अमृतकाल और सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के 12 साल विषय पर विशेष चित्र और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और पहलों की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों को देने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले में आज से संचालित होने वाले नमो सेवा अभियान के तहत 20 स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन होगा। अभियान के तहत 22 सितंबर तक संस्कृति विभाग के माध्यम से श्लोक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान उज्जैन द्वारा जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रदेश में अब तक औसत 33.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल कोटे की 89.3% है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मानसूनी सीजन को 11 दिन बाकी शेष बचे हैं। आखिरी सप्ताह में कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में प्रदेश की बारिश का कोटा पूरा हो सकता है। हालांकि इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के ज्यादातर जिलों में सामान्य बारिश का आंकड़ा कम ही रह सकता है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, धार, अलीराजपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत गुना के बरखेड़ा गिर्द में विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किया और जन विश्वास शिविर में शामिल होकर आमजन की समस्याएं सुनी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत खंडवा में नगर निगम के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंदसौर के भानपुरा ITI में उद्यम संवाद आयोजित हुआ। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा का औचक निरीक्षण किया। लगातार 36 वर्षों की न्यायिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली हॉल में विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने GPF में जमा करीब 1,01,00,000 रुपए प्रधानमंत्री केयर्स एंड फंड में दान करने की घोषणा की। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर संजय गोयल ने कल नर्मदापुरम जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेवा से संकल्प अभियान के तहत कल डिंडौरी के मेहनपानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत बैतूल जिले में शुरू की गई PM मासिक सिकल सेल OPD के माध्यम से सिकल सेल मरीजों की निरंतर स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: तेरी चमकती आंखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। छोटे बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में इंदिवर की रचना थी मदन मोहन की तर्स।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आरज़ू थी कभी हम बहार देखेंगे। बारिश फिल्म का गीत आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे। गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे, संगीतकार थे सी रामचंद्र। और इसी गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम।

0: बेस आए तू क्या कर रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और शरद कुमार की थी। आनंद बख्शी के बोल थे, आर टी बर्मन की तर्ज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाजों में तराना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था तिलक राज थापर ने और धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से। मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय की अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
2: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन,
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
2: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाजों में सुरक्षा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसे रमेश पंत ने लिखा था और बप्पी लहरी ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए।

हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में ये कुर्बानी फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

0: रफी आशा भोसले की आवाजों में हिंदी भर कर लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। फिल्म का नाम था कुर्बानी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से

0: ये नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
0: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ

मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने काला पत्थर फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे साहिल उद्यानवी और संगीतकार थे राजेश रोशन। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्रा के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंटर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है और निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद

0: श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
1: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों की के बारे में बताया है।
4: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
3: गैलेक्सी आई के CEO सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं
5: मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधीर, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
6: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। यह सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और काम

0: की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमेरिका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरलम और महीम में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
3: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि यह सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालुमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है निखिल कुमार।
4: नेशनल तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द है, बंगाल में खेला तृणमूल ने अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का यह फैसला दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनडीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनडीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में कहीं सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मानी प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसी मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है, ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी

अभी आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, संगीत का भोर से रिश्ता बहुत गहरा और आत्मीय होता है। भोर जब धीरे धीरे रात की चादर समेटते हैं तो लगता है जैसे आकाश किसी अनसुनी धुन का आलाप कर रहा हो। चिड़ियों की मीठी बोली, पत्तों की सरसराहट और मंदिर की दूर से आती घंटियों में संगीत अपने सबसे सहज रूप में सुनाई देता है। गीत संगीत हमारे कानों में सुरों का रस घोल देता है। चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

अभी आपने सुना अग्निपथ फिल्म का गाना, आवाजें थी अजय और साथियों की, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, धुन बनाई अतुल अजय ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और

अभी आपने सुना प्रेम रतन धन पायो का गीत, आवाजें अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब साबरी और उनके साथियों के साथ। गीत रचना इरशाद कामिल, संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने। और अब समय हो चला है चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

कार्यक्रम चल रहा है चितलोक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज हम 19 सितंबर को आधुनिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को याद कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के रागों को 10 थाटों में व्यवस्थित करने की पद्धति विकसित की और संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थानों की स्थापना की। ग्वालियर और लखनऊ में संगीत शिक्षा के संस्थानों के विकास को गति मिली। उन्होंने रागों और संगीत के नियमों को पहली बार आधुनिक रूप से लिपिबद्ध किया और भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की। आपके प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका, जिसके 6 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, इसे शास्त्रीय संगीत आधार का स्तंभ माना जाता है। आइए सुनते हैं ये इस फिल्म का गाना, आरक्षण फिल्म का गाना सांस अलवेली, जिसे स्वर दिया है पंडित छन्नूलाल मिश्र ने, गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: अभी आपने सुना फिल्म पद्मावत का गीत, आवाजें हैं नीति मोहन की, गीतकार सिद्धार्थ गरिमा, संगीतकार संजय लीला भंसाली।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग,

0: बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब समय हो चला है एक ब्रेक का।

विविध भारती पर चल रहा है कार्यक्रम चित्रलोक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना धड़क टू फिल्म का गाना, स्वर दिया दर्शन रावल और जुनिता गांधी ने, गीतकार गुरप्रीत सैनी, संगीत दिया रोचक कोहली और शरण रावत ने। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना सिटी लाइट फिल्म का गाना, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने और गीत की रचना की रश्मि सिंह ने और गीतकार संगीतकार जीत गांगुली।

अभी आपने सुना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का गाना, स्वर मिथुन अरिजीत सिंह शाशा तिरुपति, गीत रचना मनोज मुंतशिर, स्वर दिया मिथुन ने। चितलो कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते अगला गाना।

0: माही गाना आपने सुना फिल्म इरादा से। आवाजें थी इसमें हर्षदीप कौर, शबाब साबरी, गीतकार समीर अंजान, संगीतबद्ध किया नीरज श्रीधर ने।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भोले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना सतमे जयते टू का गाना। स्वर है जुबिन नौटियाल, नीति मोहन, गीतकार मनोज मुंतशिर, नासिर काजमी, संगीतकार रोचक कोहली। चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। अपने दोस्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम था दिल्ली से,
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने भी फोन किया, कहते थे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के, मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के,
2: आप खाए थाली में पूरे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: श्रोताओं नमस्कार। कुछ आवाजें हमें रूहानी एहसास करवाती हैं, तो कुछ आवाजें हमें हमसे ही मिलाती हैं। एक ऐसे ही रूहानी, दिल को छूने वाली आवाज की बात आज हम करने वाले हैं। उस आवाज ने हमें सहलाया, दुलारा और खुद से प्यार करना भी सिखाया। आज बात लाखों दिलों को छूने वाली आवाज के मालिक जुबीन गर्ग की। जुबीन गर्ग के लिए एक बात कही जा सकती है कि वो कोई आम गायक नहीं, बल्कि आम जन के दिलों को छूने वाली आवाज रहे। उनकी लोकप्रियता की कहानी बताने से पहले उनके जीवन की कहानी को जानना भी जरूरी है। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में मजिस्ट्रेट मोहिनी मोहन बोर ठाकुर और गायिका अभिनेत्री इली बोर ठाकुर के घर जन्मे जीबोन बोर ठाकुर, जिन्हें हमने जाना, पहचाना और सराहा जुबीन गर्ग के नाम से। इस नाम की कहानी भी संगीत से ही जुड़ती है। जीबोन बोर ठाकुर ने अपना नाम चुना पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध पहले भारतीय कंडक्टर यानी ऑर्केस्ट्रा संचालक जुबीन मेहता के नाम से। ये एक तरह से उनके प्रति सम्मान था और उस नाम के पीछे लगाया अपना गोत्र नाम, और इस तरह वो बन बैठे जुबीन गर्ग।

जुबीन को संगीत बचपन से ही घर में मिला। पिता मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ कपिल बोर ठाकुर के नाम से कविताएं और गीत लिखा करते। माँ इली बोर ठाकुर गायिका तो थी ही और उन्होंने ही संगीत का बीज नन्हे जुबीन के मन में बोया। 3 साल के थे तभी से माँ ने जुबीन को संगीत सिखाना शुरू कर दिया। थोड़े बड़े हुए और पंडित रॉबिन बनर्जी से तबला सीखने लगे। बाद में उन्होंने रमानी राय से असमिया लोक संगीत की तालीम भी ली। स्कूल के दिनों से ही जुबीन गानों की धुन तैयार करने लगे थे। जब 3 साल के थे तभी पहले गीत की धुन तैयार की थी। वो गीत था गाने की आने और उसे उन्होंने अपने पहले एल्बम अनामिका में शामिल भी किया। कई गीतों वाला ये एल्बम जुबीन ने लॉन्च किया जब वो 19 साल के थे। इसी साल उन्होंने अपने वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस से यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था।

अनामिका के बाद जुबीन ने और भी कई एल्बम लॉन्च किए, जैसे माया, आशा, पाखी। ये सभी गीत लोगों ने पसंद किए। जुबीन की आवाज की ईमानदारी, सीधे दिल को छूने की गहराई और लोक गीतों की मिठास उनकी आवाज को लोगों के दिलों तक पहुंचाती रही। बिहू के मौके पर लॉन्च किया गया उनका एल्बम उजन प्रीति सुपरहिट रहा। जुबीन ने इसी समय एक बड़ा कदम लिया। अब तक असमिया और बांग्ला भाषा में गाते जुबीन ने हिंदी गीतों की ओर रुख किया, क्योंकि मौका था कुछ बड़ा करने का। और यही ठानकर जुबीन अपनी जादुई आवाज के साथ आ पहुंचे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई। 1995 में 22 साल के जुबीन यहां आए और एल्बम चांदनी रात, श्रद्धांजलि, यूं ही कभी जैसे कई एल्बमों में उन्होंने गीत गाया। साथ ही गद्दार, पुराने कब्र, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे जैसी कई फिल्मों में भी जुबीन की आवाज गूंजी।

जुबेन को लगातार काम मिलता रहा। मुद्दा, चुपके से, मुंबई से आया मेरा दोस्त, जाल जैसी फिल्मों में भी उनके गीत आए। लेकिन बात वही थी कि जुबेन की आवाज को सराहा गया, लेकिन अब भी

जुबीन को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड भी मिला। इसके बाद जुबीन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई यादगार गीतों को अपनी आवाज दी, जैसे बिग ब्रदर में उस्ताद सुल्तान खान के साथ गाए उनके गीत जग लाल लाल ने भी धूम मचाई। जुबीन ने न सिर्फ हिंदी बल्कि असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और भारत के उत्तर पूर्वी भाग की कई लोक भाषाओं के साथ तकरीबन 40 भाषाओं में 32,000 से अधिक गीत गाए। जितनी भाषाएं उतने ही भाव, भक्ति गीत, लोक गीत, गम, खुशी, प्यार जैसे हर भाव के गीत जुबीन की आवाज में मौजूद हैं। जुबीन जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे, वहीं वो अपनी मिट्टी से भी उतनी ही दृढ़ता से जुड़े रहे। उन्होंने पूर्वोत्तर की तकरीबन 250 लोक जातियों से जुड़कर उनके लोकगीतों को एक नई पहचान दी, उसे लोगों के सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई।

यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जुबीन गर्ग केवल एक आवाज ही नहीं बल्कि संगीतकार गीतकार म्यूजिक प्रोड्यूसर अभिनेता फिल्म निर्माता स्क्रिप्ट राइटर भी रहे। बचपन से ही संगीत से लगाव इतना था कि अलग अलग भाषाओं और लोकगीतों से जुड़ाव तो रहा ही साथ ही वाद्यों से भी उनका लगाव अनोखा था। उन्हें तकरीबन 12 किस्म के वाद्यों में महारत हासिल थी। ढोल दो तारा ड्रम गिटार माउथ ऑर्गन हारमोनियम मैंडोलिन कीबोर्ड तबला और कई तरह के ताल वाद्य उनके संगीत के जादू के साक्षी थे।

एक कलाकार का जीवन जितना लोगों के सामने होता है उससे भी ज्यादा गहराई उनके मन में होती है। कुछ ऐसा ही मन जुबिन गर्ग का भी महसूस होता है। मुंबई जैसे सपनों की नगरी में कोई भी एक बार आता है तो बस यहीं का होना चाहता है, लेकिन जुबिन ने यहाँ बसना नहीं चाहा। वो अपनी मिट्टी से इतना लगाव रखते थे कि वो कहीं भी रहें उन्हें वापस अपनी मिट्टी की याद खींच ले जाती। शायद यही एक कारण था कि उन्हें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में एक गायक या संगीतकार की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जाना जाता था जिसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते और अपना समझते। जुबिन उस सम्मान को सिर्फ यूं ही नहीं पा रहे थे बल्कि उन्होंने वो सम्मान कमाया था लगातार अपने उन कामों से जो वो लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से किया करते।

जुबीन अपने संगीत के साथ साथ समाज सेवा के कई कामों से भी जुड़े हुए थे। असम बाढ़ के दौरान भी उन्होंने काफी सहायता की और लोगों से भी सहायता की अपील की। उनके संस्था कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के साथ वो आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों की सहायता करते, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई रहन सहन देखते। हम जुबीन के सेवा भाव का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कोविड के दौरान उन्होंने 19 कोविड सेंटर्स को हर सुविधा प्रदान की। उन्होंने 16 बच्चों को गोद लिया और उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाई। न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से भी उनका प्रेम कम नहीं। डॉग सेल्टर, बंदर और पक्षियों के लिए भी कई तरह की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि उन्होंने उस दौरान अपने गुवाहाटी के घर को भी कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया। कहते हैं एक कलाकार की ईमानदारी और सच्चाई उसके काम में झलकती है। शायद यही बात जुबीन को भी लोगों से जोड़ती है।

2003 साल 2000 की शुरुआत में आई फिल्म तुम्ही मोड़ मथु मोड़। कुछ अन्य फिल्में जिनमें जुबीन बतौर अभिनेता नजर आए, प्रेम अरुप्रेम, दीना बंधु, मोन जाई, भल पाबो ना जानीलू, गाने की आने, मिशन चाइना, प्रियार प्रियो, द अंडरवर्ल्ड, कंचन जंघा, राजनीति, शिकार और रोई रोई बिनाले। इनमें से मिशन चाइना पहली ऐसी असमिया फिल्म बनी जिसने 6 करोड़ कलेक्शन किया और इसका रिकॉर्ड तोड़ा जुबीन की ही फिल्म कंचन जंघा ने 7 करोड़ का कलेक्शन कर।

जुबेन के संगीत में हमें रॉक, भारतीय शास्त्रीय संगीत और असमिया लोक गीतों का मेल नजर आता है। साथ ही एक सूफियाना अंदाज भी उनकी आवाज में झलकता रहा है। हालांकि उनका जीवन भी कुछ सूफियाना अंदाज लिए हुए ही लगता है। उनका संगीत हो या जीवन, वो स्वतंत्र रहना ही पसंद करते थे। उनका मानना था कि एक कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए किसी भी तरह की बंदिश में नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि जब उनके सुपरहिट गीत या अली के बाद उन्हें उसी तरह के गीतों के ऑफर आने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। अपनी बातें, अपने विचार सामने रखने में जुबीन कभी भी नहीं घबराते थे।

2009 में जुबीन गर्ग को शॉर्ट फिल्म इकोस ऑफ साइलेंस के लिए गैर फिल्मी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2022 में उनकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा बिग बॉय में अनावृत की गई। अपने 33 साल के करियर में जुबीन ने कई गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन वो अक्सर कहा करते कि उनका गाया गीत मायाबिनी उनके दिल के करीब है। अपने फैंस को लगातार नाराज करते हुए वो ये तक कहा करते कि ये गीत उनकी अंतिम यात्रा में गाया जाना चाहिए और किसे पता था कि ये दिन भी देखना ही होगा। 19 सितंबर 2025 वो तारीख थी जब लोगों को ये दिल दहलाने वाला समाचार मिला। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर गए जुबीन, वहाँ समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और एक हादसे में 52 साल की उम्र में जुबीन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके संसार छोड़ने के विचार ने चाहने वालों को एक ऐसे शोक में डुबो दिया जिससे बाहर लाने का काम भी केवल जुबीन की आवाज ही कर सकती थी।

जुबेन के पार्थिव शरीर को जब भारत लाया गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। चाहने वालों का ये हुजूम थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 23 सितंबर तक ये दौर यूं ही चलता रहा। अपने चहेते सितारे को देखने के लिए आए लोगों के आंसू लगातार बह रहे थे। विश्व में किसी की अंतिम यात्रा में लोगों का ऐसा जमावड़ा चौथी बार ही देखा गया और भारत में पहली बार। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज भी किया गया। गुवाहाटी में जुबीन को अलविदा कहने के लिए फैंस ने उनके ही गीतों को एक साथ गाया। इसमें जुबीन का पसंदीदा गीत मायाबिनी भी शामिल था। जुबीन का जाना असमिया संगीत के एक दौर का खत्म होना माना गया, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि एक कलाकार कभी खत्म नहीं होता। वो अपनी कला के जरिए मौजूद रहता है और कुछ न कुछ सिखाता रहता है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार, अभिनेता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जुबीन गर्ग पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं
2: जिले की चिट्ठी। आलेख है प्रदीप सिंह चौहान का, वाचन स्वर है दीपा सिंह के।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीहोर जिले में जाते जाते मानसून की अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। खरीफ की सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन खेतों में हरियाली की चादर ओढ़े लहलाती अपनी कहानी खुद कहती नजर आती है। सीहोर जिले में खरीफ के सीजन में लगभग 4,08,000 हेक्टेयर रकबे में बोनी की गई है। जिले में इस बार

सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन खेतों में हरियाली की चादर ओढ़े लहलाती अपनी कहानी खुद कहती नजर आती है। सीहोर जिले में खरीफ के सीजन में लगभग 4,08,000 हेक्टेयर रकबे में बोनी की गई है। जिले में इस बार 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की फसल बोई गई है। जिले में इस बार बारिश के सीजन में बारिश

पूरा कर उत्पादन शुरू किया गया है जो राज्य की तीव्र औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिले में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता को प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाकर कहा कि बीजेपी सरकार ने जनहितैषी कार्य में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। बीते दिनों सीहोर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत ग्राम ब्रजेश नगर में जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर सहित राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और जिला अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के अंतर्गत सीहोर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुआ खेड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त किया है। सीहोर जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। अब तक कुल 25,000 घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। सीहोर जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर बाला गुरु के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे जिले में एक साथ छापेमारी कार्रवाई कर लगभग 200 नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा। सीहोर जिला मुख्यालय में गेल गैस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 4,500 घरों में गैस पाइपलाइन की फिटिंग की गई है। फिलहाल प्रथम चरण में 12,000 परिवारों को अपने घरों में गैस पाइपलाइन से मिलने लगी है। सीहोर के जिला खनिज विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 389 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में 2,43,80,597 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। सीहोर में भी गणेश चतुर्थी की धूम है। देश के चौथे स्वयंभू पीठ कहलाने वाले विक्रमादित्य कालीन प्राचीन सिद्धि विनायक चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी के जन्म की महाआरती हुई। देश भर और विदेश से लाखों भक्तगण गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर यहां आए। सीहोर की नन्ही बालिका तान्या सचदेवा ने 13 फल, 15 जनवरी, 20 अंगों की पहचान और 7 जनवरों की आवाज की हुबहू नकल निकालकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया। सीहोर में श्रावण माह में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से वार्षिक शिव पालकी यात्रा आस्था और श्रद्धा के साथ निकाली गई। पालकी में सवार भगवान भोले ने नगर भ्रमण किया। बीते दिनों सीहोर के आवासीय खेलकूद मैदान और चर्च मैदान पर मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की स्मृति में राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रदेश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी, आलेख था प्रदीप सिंह चौहान का और वाचन स्वर थे दीपक सिंह के।

आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा, ओह इतनी देर हो गई, मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था, अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा, अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी, ओमी ओमी सुन रहे हो ना, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है, और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूं। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी या कद्दू खा खाकर रुकता चुका हूं। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चलाएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूं। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहां, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहां आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूं मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं, और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

0: सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार, गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ, पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ, मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी,
1: कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, और इस पूरे प्रयास के केंद्र में रहा

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देते भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूं। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती, और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपने सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक झनकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ, ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे सुर में।

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिख कर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूं और हीरो भी मैं भी।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था, हाँ मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा, वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था।

उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती हैं। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह यह सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, शत प्रतिशत ओमी की। हाँ, ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकरा कर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी, कहाँ है तू, कहाँ छिपा है ओमी, देख सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी, और मैं यहां दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंस

वाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो, वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहां कोई कभी आया था। और वो कहां रहता है, मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूं। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहां रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई रास्ता

निगाह ले लेंगे। हाँ, टेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब ही एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

0: क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि यह हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि यह व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है। जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसकी दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी, ओमी, ओमी, ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा। यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं, उसमें न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी, जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूझ सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब, पता नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: कभी

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

आपकी कसम, इस फिल्म का गीत था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, साहिल उद्यानवी के बोल।

संघर्ष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, नगमा निगार शकील, बदायूं ने मौसिकार नौशाद। चित्रपट संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जानवर से, आवाजें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे हैं। तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आनंद बख्शी की रचना है, फिल्म है महबूब की मेहंदी, और यही है श्रोताओं आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और मैटिनी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शायर आलोक यादव जी, जो भारतीय भविष्य निधि संगठन से भी जुड़े हुए हैं और एक ऊंचे ओहदे पर हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस विविध भारती के स्टूडियो में आपके पास हूँ।
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि एक शायर का सबसे बड़ा परिचय उसकी शायरी होती है, तो सबसे पहले आपके दो चार शेर सुनते हैं, फिर बातें करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: इरशाद।
2: एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं अपने, कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा।
1: वाह, नई नस्लों के हाथों में भी
2: ताबिंदा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में,
1: दश्ते जुनू में,
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, कोसारों पर पाइंदा रहेगा, क्या बात है, शानदार है।
2: गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, अच्छा गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है
2: जी। एक दो शेर और एक गजल के, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे।
1: वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह, बड़ी बात है।
2: अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे।
1: वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: शहर से हाकिम के हर कारे जो आए गांव में,
1: जी
2: शहर से हाकिम के हर कारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह,
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी,
1: जी
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे।
1: वाह, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे, क्या बात है।
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या,
1: तो दर्द क्या,
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया,
1: जी
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, इतने प्यारे शेर आपने कहे, और गजलों की दुनिया जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय दुनिया है, पर ये रास्ता आसान नहीं है, तो गजलों के रास्ते पर आपने कब चलना शुरू किया था?
2: जी दरअसल मैं कविता लिखने लगा था जब स्कूल में था मैं,
1: जी
2: उसके बाद जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने कविता के साथ कहानी भी लिखी कुछ, जो उस दौर के सबसे लोकप्रिय अखबारों में छपी और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई। शायरी की तरफ और गजल की तरफ मेरा बहुत रुझान था, लेकिन कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। इतना मुझे पता था कि गजल का एक उरूज होता है और उस उरूज को समझना बहुत जरूरी है गजल कहने से पहले। 1993 एक ऐसा साल था जहां मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने कविता लिखना और कहानी लिखना, मतलब लेखन का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी, और उसी में पूरी तरह से डूब के रह गया मैं।
1: इससे पहले आप क्या कर रहे थे?
2: इससे पहले मैं बीएससी और एमबीए किया मैंने।
1: तो ये जो बीएससी है ये तो विज्ञान की पढ़ाई हुई,
2: जी
1: फिर अचानक एमबीए की तरफ घूम गए आप?
2: एमबीए चूंकि प्रोफेशनल कोर्स था और उस दौर में बहुत कम लोग एमबीए करते थे, मुझे इसके बारे में पता लगा और मेरा रुझान था, मैंने एमबीए किया उस समय।
1: तो उसके बाद पेशेवर दुनिया की ओर नहीं गए?
2: बिल्कुल गया मैं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया, लेकिन शुरू से लगन ये थी कि सिविल सर्विसेज करना है, तो हमेशा से था कि तैयारी करनी है।
1: तो ब्रेक लिया?
2: ब्रेक लिया मैंने जॉब से, और ब्रेक लेके फिर मैंने तैयारी शुरू करी।
1: कितने बरस तैयारी की?
2: बहुत साल तैयारी की मैंने 93 से लेके 98 बैच में मैं इसमें आया।
1: ओहो जी, तो कुछ नाकाम अटेम्प्ट्स थे या क्या?
2: बिल्कुल नाकाम अटेम्प्ट्स थे, बहुत सारे नाकाम अटेम्प्ट रहे।
1: जी जी
2: यूपीएससी आसानी से घुसने नहीं देता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कठिन राह है
2: जी,
1: है ना, वो आग का दरिया है।
2: बिल्कुल।
1: तो इस दौरान जब आप यूपीएससी की पढ़ाई में मुब्तिला थे, क्या कलम मचलती नहीं थी लिखने के लिए?
2: हाँ बहुत, बेशक ऐसा होता था, कई दौर ऐसे आए, कई समय ऐसे आए कि लगा कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले इस मकसद को हासिल कर लिया जाए, ये पूरा कर लिया जाए, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी समय लग गया।
1: अच्छा।
2: और मैंने दोबारा जो लिखना शुरू किया है वो 2012-13 में फिर से लिखना शुरू किया।
1: आपने बताया कि ये जो नाकाम अटेम्प्ट थे और एक जदोजहद का सिलसिला समझ में आता है
2: जी,
1: बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें सुन रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा सिनेरियो होता है, एक हॉस्टल या एक किराए का कमरा, एक ट्रांजिस्टर,
2: बिल्कुल
1: एक टेबल,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सिलसिला जिससे आप भी बाकायदा वाकिफ होंगे, वहां रेडियो जो है एक बहुत बड़ा साथी होता है,
2: बहुत बड़ा।
1: और आप एक कामयाब यूपीएससीएन हैं
2: जी,
1: तो क्या सलाह, एक एक जो ज्ञान का तत्व निचोड़ क्या देंगे आप अपने अनुभव का, ताकि उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी रोशनी मिले?
2: देखिए, किसी भी खासतौर से यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है, ये लड़ाई लंबी है।
1: आशा और निराशा के बीच जिस तरह का तनाव का सिलसिला है, उससे कैसे निपटें ये बच्चे?
2: उससे निपटने के लिए आपको कोई अच्छा शौक रखना चाहिए, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो शायरी का हो, चाहे पढ़ने का हो। मैंने लिखना जरूर छोड़ा, बट पढ़ना नहीं छोड़ा था मैंने। और यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट था, वो हिंदी लिटरेचर था।
1: ओके
2: जी।
1: तो ये बड़ा कठिन,
2: हिंदी लिटरेचर मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था।
1: हाँ, तो ये कठिन सिलसिला चुना था आपने
2: जी,
1: है ना, क्योंकि अमूमन लोग जो है
2: पॉपुलर था मेरे लिए
1: जी। यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाने वाला दिन और उसकी कैफियत बताएं।
2: एक बहुत खूबसूरत दिन था वो, और ये लगा कि जो सपना था वो मैंने, मेरा साकार हुआ, तो खुशी बहुत थी, आंखों में आंसू थे।
1: बिल्कुल, क्योंकि अच्छा प्रीलिम्स मेंस निकाल के फिर इंटरव्यू, कई लोग तो मेंस पे अटक जाते हैं, इंटरव्यू में निकल जाते हैं, छन जाते हैं, तो ये बड़ा ही चांद को छू लेने जैसा।
2: और इस दौरान मैं फिर एक बार कहूंगा कि आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव तो बहुत पुराना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैंने युववाणी ज्वाइन किया। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान भी आकाशवाणी को मैं जरूर सुनता था, रेडियो को जरूर सुनता था, मेरा एक छोटा ट्रांजिस्टर था, उस ट्रांजिस्टर पे गाने जब बजते थे तो मन बिल्कुल खुश हो जाता था।
1: बिल्कुल, वो एक
2: तरोताजगी मिल जाती थी
1: जी। एक नई जिंदगी होती है जिम्मेदारियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी की
2: जी।
1: मैं समझ पाया जब आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगा वापस लिखना शुरू करने में, तो वो जो शुरुआती साल थे वो कितने उबड़ खाबड़ थे?
2: आप दूसरे दौर की बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल
2: जी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायरी की तरफ मेरा रुझान था और एक जबरदस्त आकर्षण था गजल के प्रति, तो मैंने फिर तलाश करना शुरू किया कि कोई मुझे इस फन को सिखा दे। और उस समय मेरी मुलाकात हुई अखिल नुमानी साहब से, जो कि बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे सिखाना कबूल किया।
1: और ये तो गजलों की बहुत पुरानी उर्दू शायरी की परंपरा है कि आपके
2: उस्ताद हो
1: जिनसे आप मश्क करें कि भाई।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सिलसिला
2: जी। तो उन्होंने मुझे इसका अरूज सिखाया और फिर हाथ पकड़ के चलना सिखाया। इसके साथ साथ एक वहाँ बरेली में सरदार जिया साहब थे, उन्होंने भी मेरी तरबियत की और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सिखाया। और उनके रहते हुए ही मेरा पहला जो संग्रह था उसी के नाम 2016 में आया
1: जी। जी, कितनी सुंदर बात होती है अपनी किताब अपने हाथों में आना
2: जी।
1: बेशक। तो वो दिन कैसा था जब किताब पब्लिश होके उसकी प्रतियां आपके पास आ गईं?
2: जी, इसकी भी एक कहानी है कि मैं चाहता नहीं था कि मैं किताब अभी लाऊं। मेरे अंदर ये था कि पहले अच्छी गजलें और कहूं और जब एक जखीरा तैयार हो जाए तब इत्मीनान से सोच के लाऊं कि उसमें अच्छी गजल जाए। लेकिन हमारे उस्ताद का भी कहना था और हमारे जो दूसरे उस्ताद थे सरदार जैसा, वो काफ़ी चाहते थे कि पहली किताब आ जाए। तो हम इस किताब को लेके आए और जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ।
1: वाह, बढ़िया।
2: मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी शायर या किसी लेखक की पुस्तक का प्रकाशन जो है उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसको एक नया रूप मिलता है, समाज के सामने उसका एक नया रूप आता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। तब तक क्या आपने मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया था?
2: नहीं, छोटी नशिस्तों में पढ़ना शुरू किया था मैंने।
1: जी, ये जो सिलसिला होता है महफिलों में पढ़ने का,
2: जी
1: इसके लिए एक अलग तरह का हुनर और एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए।
2: बेशक।
1: तो उस रास्ते पर जब आप चल पड़े तो उसके तजुर्बात हमारे साथ शेयर करिए।
2: शुरुआत दौर में बहुत मुश्किल होती है कि आप मंच पे खड़े होके माइक पर जब पढ़ते हैं तो खासतौर से गजल पढ़ते हुए लगता है कि कहीं कोई लफ्जिश ना हो जाए और कहीं ज़रा सा चूके और लोगों ने आपको खारिज करना शुरू कर दिया। तो उस सबसे बचने के लिए एक तनाव दिमाग में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो ओवरकम किया मैंने और फिर प्रस्तुतियों

0: गौर से सुनें और अगर अच्छे हों तो उस पर दाद दें।
1: इस तरह के अनुभव होंगे वो हमारे साथ बांटिए।
0: कई बार ऐसा हुआ, जैसे फरत एहसास साहब हैं, उन्होंने मेरे एक शेर की तारीफ की जो मेरा दूसरा संग्रह है कलम जिंदा रहेगा, उस पर उन्होंने लिखा भी था और मुशायरे में भी उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग वो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा एक शेर था जिसको उन्होंने बहुत तारीफ किया और कहा कि बिल्कुल सही इसमें इस्तेमाल हुआ। वो शेर था कि मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब,
1: ओहो
0: मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा।
1: वाह, अच्छा है, अच्छा है। तो इस शेर की फरत एहसास साहब ने तारीफ की और बजाय इसके कि वो अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल गजलों में अच्छा नहीं मानते। आधुनिक गजल अपने ये कहना चाहिए कि जो पारंपरिक ढांचा है उससे बहुत आगे निकल गई है और वो अपने समय और समाज की बात कर रही है।
0: जी,
1: आप किस तरह से अपने शेरों में अपने समय और समाज की बातों को पिरोते हैं?
0: देखिए, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ और मेरे जो एहसासात हैं वहीं से निकल के आते हैं, चाहे वो मेरा दफ्तर हो चाहे वो लोग हों जिनको मैं सर्व करता हूँ। तो जैसे मैंने एक शेर कहा कि तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: वाह, कितनी प्यारी लाइन है।
0: तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: हाँ।
0: बेकार खुशामद में ना यूं वक्त गंवाओ।
1: वाह, ये तो सीधी सीधी बात हो गई है।
0: ये सीधी सीधी बात
1: ये मतलब आपने अपने दफ्तर के लिए कहा है।
0: जी जी जी, ऐसे ही मेरी गजल है। मैं चाहूंगा कि दो चार शेर आपको पेश करूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कहां से
1: जी
0: अपने विषय उठाता हूं।
1: जी इरशाद।
0: तो ये है कि लोग कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं
1: जी
0: उनके लिए कहा जाता है कि सूप बोले तो बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72
1: छेद। बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में
1: बहुत मशहूर कहा
0: होता है। जी, तो मैंने कहा कि सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
1: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले
0: छेद उनमें भी 72 निकले।
1: ओ, उल्टी बात कही है।
0: उल्टी बात है।
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, जिनको हम सूप समझ रहे हैं
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले छेद उनमें भी 72 निकले। दफ्तरों में ना मिला एक इंसान,
1: वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले।
1: क्या शानदार है, क्या खूबसूरत। वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। और धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है,
1: क्षितिज ओझल है,
0: धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वो सिलसिला है जहां आप अपने समय और समाज को अपने अशार में पिरोते हुए चलते हैं। पहली किताब से कुछ चीजें हमें सुनाइए प्लीज।
0: जरूर, एक गजल के शेर सुनिए कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं।
1: क्या बात है, वाह।
0: अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारी छोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं।
1: बढ़िया है।
0: आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे,
1: औजार देखे,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं।
1: सुंदर, बहुत बढ़िया।
0: और है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पहली किताब से आपने एक गजल पढ़ी है।
0: जी। एक गजल है जो तत्सम शब्दावली के साथ में हिंदी की।
1: जी जी,
0: मैं चाहता हूं उसको भी पेश करूं आपके सामने। के पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण में,
1: वेदना का व्याकरण,
0: पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण में, हूं समर में आज भी ये रे क्षण में।
1: वाह,
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो,
1: जी
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटे आवरण में।
1: क्या बात है।
0: रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, खोल बाहें कर रहा हूं दुख ग्रहण में।
1: वाह,
0: ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, कर रहा हूं अपनी ही वै का शरण में।
1: वाह,
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी,
1: जी
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी,

0: लेकर भागता सहमा हिरण में।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा।
1: एटम बम,
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा, देखने में लग रहा हूं एक कण में।
1: वाह बहुत अच्छा है।
0: है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिक्रमण में।
1: क्या बात है।
0: ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में।
1: वाह वाह, इसमें पूरी साइंस वाइंस आ गई है।
0: इसमें तीन धर्मों के बारे में आ गया।
1: देखिए दर्शन तो आया
0: जी,
1: पर मैंने साइंस भी देखी कि हाँ प्रॉपरली साइंस आई है इस गजल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में। और एक दो गजल के शेर कुछ और पढ़ देता हूं मैं आपके सामने, के बिन बात अगर रूठ वो जाएं तो करूं क्या।
1: जी,
0: बिन बात अगर रूठ वो जाएं तो करूं क्या, और वजह भी कोई ना बताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, वो मुझसे जो नजरें ना हटाएं तो करूं क्या? क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, और यार भी एहसान जताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, वाह।
0: होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, वादा भी करें और ना आए तो करूं क्या।
1: वाह,
0: मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, हर बात मेरी हंस के उड़ाएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि से है, ये संगठन कितना मायने रखता है और आज आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करता है, उनके पीएफ के माध्यम से, उनकी पेंशन के माध्यम से, और एक ईडीएलआई नाम की एक इंश्योरेंस स्कीम है उसके माध्यम से। इस समय 7 करोड़ के आसपास हमारे सदस्य हैं जो लाइव, जो सब्सक्राइबर हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन आता है।
1: जी जी, बहुत बड़ी तादाद है।
0: बहुत बड़ी तादाद है, और इनकी पेंशन और इनके पीएफ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक खासतौर से मैं अपनी सर्विस के बारे में कहूँगा कि हमको दोनों मौके फराहम होते हैं कि हम स्टेट की जो पावर है वो भी रखते हैं, और साथ में एक रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं, साथ में हम जो है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम करोड़ों जो कर्मचारी हैं जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं
1: उनकी बेहतरी,
0: उनकी सेवा कर रहे हैं।
1: जी, एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो अपने काम के बीच में लिखने का वक्त कैसे निकलता है?
0: देखिए, इसीलिए शायद मैंने इस शायरी को चुना।
1: जी,
0: क्योंकि शायरी ये मुझे ये सुविधा देती है, ये सहूलत देती है कि मैं एक शेर कभी भी कह सकता हूँ और उसको नोट कर सकता हूँ या दिमाग में रख सकता हूँ। दिमाग से तो निकल जाता है, तो अक्सर वो
1: स्लिप में
0: लिख लिया, जो दिमाग में रहता है वो अक्सर निकल जाता है। तो कई बार होता है काम करते करते भी कुछ ऐसे एहसास आते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनसे एक शेर का जन्म होता है, वो शेर उस समय लिख लिया जाता है, उसके बाद जब कभी मौका आता है तो उसमें आगे के शेर कहे जाते हैं।
1: क्या बढ़िया बात है, अपनी किताबों के बारे में बताइए।
0: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उसी के नाम मेरा पहला संग्रह था जो 2016 में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से आया था।
1: जी जी,
0: उसके बाद 2022 में कलम जिंदा रहेगा मेरा संग्रह था दूसरा।
1: जी,
0: जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। जो पहला संग्रह था उसी के नाम, वो उर्दू में भी आया, उर्दू स्क्रिप्ट में भी आया नश्तालिक में, उसे अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया था। और तीसरा संग्रह जो है वो लफ्ज़ चारागरी भी करते हैं के नाम से, इनफैक्ट ये संग्रह मैंने नहीं किया था बल्कि बहुत मशहूर लेखक, शायर हैं, कवि हैं, ओम निश्चल जी।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत अच्छे लेखक आलोचक हैं। उन्होंने एक सीरीज निकाली है सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली से, उसमें दौरे हाजिर के जितने भी अच्छे शायर हैं उन सब पे एक एक किताब निकाली उन्होंने। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे भी इस सीरीज में शामिल
1: किया, सिलसिले में उन्होंने चुना आपको।
0: जी,
1: तो इसमें से कुछ सुनाइए प्लीज।
0: हाँ, लफ्ज चारागरी भी करते हैं ये इस जो संग्रह है उसका टाइटल है। मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ कि मौसम के बदलाव दिखाऊं।
1: जी,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं, तुम आओ तो घाव दिखाऊं।
1: वाह वाह,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं तुम आओ तो घाव दिखाऊं जहरीले लहजों में उलझे जहरीले लहजों में उलझे रिश्तों के उलझाव दिखाऊं
1: वाह
0: बस्ती भर में सन्नाटा है बस्ती भर में सन्नाटा है देखोगे तुम आओ दिखाऊं
1: वाह
0: बस्ती भर में सन्नाटा है देखोगे तुम आओ दिखाऊं घर का आंगन सिमट गया है घर का आंगन सिमट गया है रिश्तों का बिखराव दिखाऊं
1: वाह वाह
0: देखो तो बंजर बस्ती में हिजरत का फैलाव दिखाऊं
1: वाह वाह वाह
0: आलोक अब आवाज ना आहट आलोक अब आवाज ना आहट किसको दिल के घाव दिखाऊं
1: बढ़िया है बहुत अच्छा
0: आलोक अब आवाज ना आहट किसको दिल के घाव दिखाऊं एक गजल और है कि फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी
1: जी
0: फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी
1: वाह
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं
1: रूह पे भी छाले हैं
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी
1: वाह वाह वाह
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी
1: वाह वाह
0: बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी
1: क्या बात है वाह
0: उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी वो दबे पाँव बराबर से गुजर जाता है
1: जी
0: वो दबे पाँव बराबर से गुजर जाता है गो कि उससे मेरी बरसों की
1: शनासाई थी क्या बात है
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं
1: आहा प्यारी लेने
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी
1: वाह क्या बात है कितने अच्छे अशआर आपने सुनाए आलोक जी इतनी सारी बातें हुई आपकी पसंद के एक गाने की बारी है चलते चलते तो बताइए कि इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे
0: मैं पल दो पल का शायर हूँ
1: वाह साहिर लुधियानवी फिल्म का नाम है कभी कभी खयाम साहब का संगीत इस गाने में सुनते हैं

0: आलोक जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपकी रचनात्मक की यात्रा के बारे में हमने जाना और आपके अशार भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि आज मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ कि मैंने विविध भारती का स्टूडियो देखा, विविध भारती का ऑफिस देखा, जिस विविध भारती को मैं बचपन से सुनता आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैर कानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर, शबीर कुमार की आवाजें इन फिल्म प्यार झुकता नहीं। एस एच बिहारी की बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: सच बिहारी का लिखा गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत।
1: ये नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: कदील शिफाई की रचना आपने सुनी उत्तम सिंह जगदीश की तर्ज थी, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजें और पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे हे।
3: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
3: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
3: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
5: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
3: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज फिल्म खिलौना, आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अनजान की रचना आपने सुनी है, चित्रगुप्त का संगीता, आशा भोसले की आवाज, फिल्म थी बलम परदेसिया।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुहाग। फिल्म का गीत आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यादों की महफिल ये प्रोग्राम श्रोताओं संपन्न हुआ।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिंदगी में कश्मकश या उलझनों का भी गजब समा होता है श्रोताओं। समझ नहीं आता कि जिंदगी में कश्मकश है या कश्मकश का ही ताना बाना है जिंदगी। कभी मोहब्बत, कभी किसी दो बातों को लेकर, दो चीजों को लेकर, या फिर कहीं घूमने जाने को लेकर, या फिर कभी शादी ब्याह को लेकर कश्मकश तो रहती ही है।

एक सुलझाया तो दूसरी उलझ गई। ऐसे में करना क्या चाहिए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो चलो कहीं घूमने निकल लेते हैं, और कभी ऐसा भी लगता है कि चलो आज रेडियो पर गीतों का आनंद लेते हैं। तो विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए श्रोताओं का भी। अपने फेसबुक पेज पर तो हमने आज की इबारत लिखी ही है, डाली ही है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा भी है। अपने और भी श्रोताओं के लिए, रेडियो श्रोताओं के लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। जिंदगी में कश्मकश अक्सर दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझते हैं ये दिन ये रात, कुछ एहसान उन आँखों का। ये कश्मकश के खूबसूरत सिलसिले कभी गम की दवा, कभी रंग में बिखरते नूर की तरह नजर आते हैं, और सही गलत के दो राही पर ला खड़ा करते हैं। शोख फूलों की मोहब्बत का एहसास तो कभी चंदन की खुशबू को छूने की चाहत भी मन में हलचल मचाती है और अक्सर उलझन में डाल देती है। ये उलझनें रूप तो बदलती हैं थोड़ा तड़पा कर, लेकिन संघर्ष के कुछ न कुछ मायने तो सिखा जाती हैं। ये कश्मकश की रातें कट भी जाती हैं और जिंदगी में नई मंजिलें, नया सवेरा होता है। कश्मकश को लेकर आज आपको हमारी जो ये इबारत है वो पढ़नी भी है, और हमें कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजनी है। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम से। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तर्ज आपको बतानी है श्रोताओं। शकील बदायूनी के लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में संघर्ष फिल्म से। वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये नगमा था। अगले गीत में आपको बताना है कि संगीत किसका है और इस गीत में भी यही आपको बताना है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी जिंदगी की कश्मकश हमें उलझाती जरूर है मगर यही उलझने हमें अपने दिल की आवाज सुनना भी सिखाती हैं। कुछ चाहतें अधूरी रह जाती हैं, कुछ आंखें बिना कहे बहुत कुछ कह जाती हैं और कुछ रास्ते तड़पा कर भी हमें नई मंजिल तक ले जाते हैं। शायद हर कश्मकश के पीछे कोई सीख और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा छुपा होता है। आज की इबारत भी जैसे दिल से यही कह रही है, उलझ रही नहीं बस चलते रहिए, रास्ते खुद अपनी मंजिल बता देंगे। एक और श्रोता लिखते हैं, दिलों की राहें भी अनोखी इम्तहान लेती हैं, कभी मृदुल सफलता तो कभी कसहली कड़वाहट से भरी कश्मकश भंवर में उलझ इंसान स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है और स्वयं को ढूंढता है। नूर के लिए तरसती निगाहों में उसे मंजिल भी एक मरीचिका सी प्रतीत होती है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज जो शब्द हैं कश्मकश मोहब्बत उलझन जिंदगी संघर्ष रात, इन शब्दों पर आधारित गीत सुनने को मिल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की कश्मकश दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझती है, ये दिन ये रात कुछ एहसास दिला जाते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, अक्सर मेरा मन कहता है, अक्सर कोई लड़का इस हाल में एहसान होगा तेरा मुझ पर, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। यानी कश्मकश को लेकर जो भी कुछ गीत इनके जहन में आए हैं वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की इस खूबसूरत कश्मकश दिल की राहों चाहतों और सही गलत के दो राहों को बयां करता एक बेहद गहरा फिल्मी गीत जो है वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की ये उलझने और जज्बात ही इंसान को भीतर से मजबूत और संवेदनशील बनाते हैं। जीवन के अनकहे एहसास दिल की कश्मकश, दिल हमेशा किसी न किसी में उलझ कर सही राह तलाशता है। कभी कभी आंखें खामोश रहकर भी एहसान और दर्द बयां करती हैं, चाहतों उम्मीदों और ख्वाहिशें ही इस सफर को खूबसूरत और जिंदा रखती हैं। आप अगर कलाकार भी बता दें तो क्या ही अच्छा है।

0: सुनील दत्त और वैजयंतीमाला पर फिल्म आया गया आम्रपाली फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत में तर्ज थी शंकर जयकिशन की और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था तर्ज थी नौशाद की। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक दिया है। एक श्रोता लिखती है कि जीवन में जब दुविधा मानसिक तनाव या खींचातानी होती है तब समझ में नहीं आता क्या करें। उलझन को सुलझाने में भले ही देर हो सकती है लेकिन भगवान की घर सदा के लिए अंधेरा कभी नहीं होता। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है इस गीत को इन्होंने पसंद किया है। और कश्मकश को लेकर या कश्मकश के बाद जो मंजिल मिलती हैं उसके उजालों को लेकर बहुत सारे गीत हमारे श्रोताओं ने भी सुझाए हैं तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो बताइए श्रोताओं कि जब किसी अजनबी से पहली बार बात होती है तो बड़ी कश्मकश होती है, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि कभी आपको किसी से बात करने में कोई कश्मकश हुई, कोई उलझन हुई, लेकिन वो बातें इतनी प्यारी थी कि वो भी इतनी याद आई कि वो भी एक कश्मकश का कारण बन गई। और एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि दोस्ती और प्यार इन दोनों के बीच अक्सर कश्मकश चलती है, किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे। एक श्रोता लिखती है कि नई मंजिल पाने के लिए कश्मकश भरी जिंदगी में कई राहों को पार करना पड़ता है। दो प्रेमियों का मिलन वो खूबसूरत पल मन में उलझन में भी डाल देता है मन को, पर उस मीठे एहसास को पाने के लिए मन में हलचल मचा देती है और आत्मविश्वास जागरूकता है। एक ना एक दिन नई मंजिल मिलेगी, नया सवेरा होगा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहब्बत कश्मकश उलझन जिंदगी संघर्ष नूर रंग आंखें आंसू ये सारे शब्द हैं तो इनसे गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में जो भी कश्मकश होती है वो सीधे तौर पर दिल की राहों से ही होकर गुजरती है। चाहत या तृष्णा ही इस कश्मकश का मूल कारण है। दिन रात इन्हीं चाहतों में उलझे रहना माया का प्रभाव माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उलझन दुख का कारण नहीं होती। कुछ उलझनों को सुलझाने में जिंदगी बहुत गहरे सबक सिखाया करती है। और भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। दो सवाल जो हमने आपसे पूछा था उनके जवाब फटाफट आप भेज दें श्रोता।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार

आप सुन रहे थे ये गीत आराधना फिल्म का कलाकार आपको बताने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी केवल सीधी लकीर नहीं बल्कि ये चाहतों एहसासों और कश्मकश से भरे दिन और रातों का ये खूबसूरत ताना बना है। ये कश्मकश इंसान को अक्सर सही और गलत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां मन में कई तरह की हलचले और सवाल उठते हैं। जीवन की ये उलझने और तड़प व्यर्थ नहीं जाती, ये हमें संघर्ष के असली मायने सिखाकर हमारे व्यक्तित्व को तराशती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं जिंदगी की यही कश्मकश ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है जहां दिल की राहों पर चलते हुए चाहते यादें और फर्ज आपस में टकराते हैं जो कभी तड़पाते हैं तो कभी चंदन की खुशबू की तरह छू कर गुजर जाते हैं। ये कश्मकश हमें कभी कभी सही और गलत के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है जहां से कोई रास्ता नहीं सूझता। ये उलझने हमें तड़पाती जरूर हैं पर यही तड़प हमें मोहब्बत का मर्म और गम को दवा बनाना सिखाती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब हम दिल की राहों पर कदम बढ़ाते हैं तो उम्मीदों का एक नया आसमां खुलता है। दिल चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, प्यार सुकून सफलता और रिश्ते कि लेकिन जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती है। वो हमें उन मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। यही वो बिंदु है जहां से कश्मकश की शुरुआत होती है। तो ये तो बताइए कि जब आप ऐसे उलझनों में होते हैं तो अपनी बातें किसी को कहते हैं या फिर खुद से ही फैसला लेना ठीक समझते हैं? आपको गीतकार बताने हैं श्रोताओं।

0: से दिल में समा, आजा रे आज जरा आ, लहरा के आज जरा आ, आजा रे आज जरा।
1: हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रोताओं कि जब कश्मकश होती है तो फैसला तुरंत ले लेते हैं। ये फैसला कुछ लोग बड़ी सोच समझ के बाद लेते हैं, यानी सोचने समझने के बाद लेते हैं। तो आप किस तरह से फैसले लेते हैं जब आपको कोई कश्मकश होती है? और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि जब आप किसी कश्मकश में थे तो किस तरह से निकले, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ये जो कश्मकश होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में क्या रेडियो पर सुनाई देता कोई गीत आपकी कश्मकश को, आपकी उलझनों को कुछ कम करता है? तो आप हमें ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, दोस्ती और प्यार वैसे तो दोनों की ज़रूरत ज़रूरी है, पर दोनों में से एक को चुनना हो तो हमारा दिल दोस्ती को चुनेगा। तो इन्होंने अपनी बात तो कह दी। हमारे बाकी श्रोता भी ज़रूर लिखें कि दोस्ती और प्यार दोनों में से अगर आपको चुनना हो एक को, तो आप किसे चुनेंगे? और एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन साथी ही अगर आप का सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो क्या बात है। और आराधना का गीत इतने पसंद आया। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक कश्मकश का सामना करना पड़ा था जब मेरी बेटी बीए इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही थी और टीवी भी न्यूज रीडर से प्रभावित हो पत्रकारिता करियर करना चाहती थी, किंतु मुझे उसकी दक्षता का अनुमान था, अतः बहुत समझा बुझाकर इस प्रभाव को दूर किया और इंग्लिश में पीजी करने को कहा। और आज वो 14 साल से आईटी सेक्टर में सीनियर पोस्ट पर है। ये उलझन दूर हुई तो क्या ही अच्छी बात है। जी हाँ, सही फैसला सही वक्त पर बहुत ज़रूरी होता है। और यही कश्मकश, यही उलझनें फिर खुशियों में या

ये गीत आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का मुकेश की आवाज में, कमर जलाल आबादी के बोल थे। आपको संगीतकार बताने हैं और कलाकार बताने हैं। श्रोताओ, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी भी एक झूले की तरह होती है, जैसे झूला जितना जल्दी पीछे जाता है ठीक उतना ही आगे आता है। ठीक इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात के भी होते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक यात्रा है, इसे रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने से कभी पूरी हो जाएगी, कब पूरी हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी होती है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि जीवन के इस उतार चढ़ाव में न जाने कितनी उलझने आती हैं और जाती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। कभी कभी उलझे हुए रिश्ते हम चाह कर भी नहीं सुलझा सकते, एक दूर सुलझाते हैं तो दूसरा कहीं और उलझ जाता है। और कैसे सुलझाऊं मैं इस उलझन को, बताए कोई राहें धुंधली सी। तो कुछ इन्होंने अपनी पंक्तियां भी लिखी हैं। आपको कौन से ऐसे गीत हैं जो कश्मकश के हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं? इस गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ, और इसके पहले जो गीत आपने सुना उसमें भी कलाकार आपको बताने हैं।

नरगिस और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रात और दिन फिल्म से। हमारी एक श्रोता लिखती है कि सबसे ज्यादा कश्मकश का समा अपने होने वाली साथी और उसके परिवार से बात करने में होती है। बहुत सारी फीमेल श्रोता मेरी बात से सहमत होंगी, ऐसा इनका लिखना है। शायद किसी नए व्यक्ति के बारे में ये लिख रही हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सच्चा प्यार ही दोस्ती का आधार है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत हो सकते हैं राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, चंदन सावधान गीत तो बहुत ही खूबसूरत गीत है श्रोताओं। लेकिन आपने जो बाकी के दो पहलू दो बातें लिखी हैं राही मनवा यानी गीत के विषय में, दुख की चिंता क्यों सताती है या रात भर का मेहमान अंधेरा, तो ये तो कश्मकश के एक पहलू हो गए। कश्मकश के बहुत सारे पहलू हैं श्रोताओं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि जिंदगी कश्मकश है या कश्मकश ही जिंदगी है, कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मकश तो हर पल साथ रहती है। एक आपसे सवाल पूछते हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है जब ऐसी कश्मकश होती है, तो दिल की सुननी चाहिए या फिर दिमाग की सुननी चाहिए? कलाकार बताएं और संगीतकार।

0: है वो सबसे हसी इनाम है ये छू लेने दो नाजुक हो तुम को।
1: राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया फिल्म काजल का ये गीत आपने सुना और ये तर्ज थी रवि की, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मकश कभी भी हुई तो सोच समझ कर उस समय जो सही लगा वो किया, पर कुछ निर्णय बाद में गलत भी सिद्ध हुए। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत जो हमने पहले आपको सुनवाया था इन्हें बहुत पसंद है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि जिंदगी आप के चाहे अनुसार ही चल सकती है क्या, भविष्य के झरोखों में क्या है इसका सिर्फ पूर्वानुमान ही किया जा सकता है, उसी के अनुसार कश्मकश के समय निर्णय लिया जा सकता है, आने वाला समय ही बताता है कि ये निर्णय सही था या गलत। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपकार का गीत था, भारत कुमार यानी मनोज कुमार पर फिल्माया गया। जी हाँ, आशा पारेख भी नजर आती हैं। तो आपसे हमने पूछा था दिल और दिमाग दोनों में से आप किसकी सुनते हैं या किसकी सुनना चाहेंगे। और एक सवाल और आपसे पूछते हैं श्रोता कि क्या जब हम कॉलेज में थे तो उन विषयों को लेकर कोई कश्मकश आपके जहन में था? गीत को पहचान

कॉलेज की जब शुरुआत होती है श्रोताओं, तो विषयों को चुनने में बड़ी कश्मकश होती है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप जरूर लिखें। मौसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती और प्रेम में एक चुनना हो तो दोस्ती ही चुनेंगे, दोस्ती की तो बात ही अलग है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद कॉलेज का पहला दिन था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तब काफ़ी देर तक क्लासरूम के बाहर हम और एक अन्य लड़की टहल रहे थे। थोड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए हमने पूछा, न्यू एडमिशन? तो उसने भी हाँ करके सर हिलाया, फिर बातचीत शुरू हुई। वही लड़की आज तक अच्छी सहेली है। जी हाँ, अच्छे साथी तो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या आपका भी कोई कॉलेज में अच्छा साथी बना जिसे आप शुरू में बातें करने से बहुत हिचकिचाते थे? ये फिल्म आपको बतानी है।

सवाल का जवाब बड़ी ही शिद्दत से दीजिए श्रोताओं, कि क्या आपके मन में इस समय क्या कश्मकश चल रही है?

अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया कांच और हीरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई रे साथ ही रे, जिंदगी दिलों को जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को तोड़ती भी है। जब जिंदगी की उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, तब दिल कहता है जाऊं कहां बताए दिल। एक पैरडी जैसे इन्होंने बनाई है श्रोता, और हम इनकी सराहना करते हैं। अच्छा लिखा है इन्होंने, और हमारे जितने भी श्रोता हैं कार्यक्रम से जुड़ते हैं उन सभी का बहुत बहुत तो शुक्रिया हम कहते हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओ कि जो विषय होते हैं उनको लेकर आपकी कितनी कश्मकश थी कॉलेज में, और इस समय आपके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जब उलझने होती हैं, ऐसी कश्मकश जब होती है, तो क्या कभी रेडियो विविध भारती आपका साथी बना? कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म बतानी है।

अमानुष फिल्म का ये गीत था, प्रेमानारायण और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया है। श्रोता, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जिंदगी के उतार चढ़ाव, कश्मकश और उलझनों को के भाव को आज के गद्यांश ने समेटा हुआ है। अजीब है जिंदगी का ये नूर और रंग, कभी आंखों में अश्क, कभी चाहतों की उमंग, चंदन की चाहत हो या फूलों का एहसास, जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तहान लेती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम जो है, जब हम सुनते हैं या फिर जब हम विविध भारती सुनते हैं, तो ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम करता है। संगीत जगत में हमारे रग रग में खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। आकाशवाणी।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि दिल से यानी भावना और अंतःप्रेरणा से और दिमाग यानी तर्क और बुद्धिमता से सोचना जीवन के हर बड़े फैसले में दिल और दिमाग का तालमेल ही सही होता है।

हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जीवन में हजारों बार कश्मकश आए लेकिन मैं हमेशा अपने दिल की आवाज सुनती हूँ, फिर कोई गलत कहे या सही। इंसान का अपना भी कुछ सोच होनी चाहिए अपनी।

मोहम्मद रफी की आवाज थी और सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोता, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि विविध भारती मुंबई के श्रोता हैं हम और जीवन में आए कश्मकश और समस्याओं को इसे सुनकर हल चुटकियों में खोज लेते हैं। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

ये गीत हमने लिया है तेरी मेहरबानी फिल्म से, आवाजें शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की, एस एच बिहारी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत।

और अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ रंग फिल्म का ये नगमा, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की प्रतिभा को सम्मान देते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।
2: तो बच्चों आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज स्कूटी लिए के साथ समाज में विकास के काम करें और आने वाले समय में राज्य को भी समृद्ध करें और देश को भी आगे बढ़ाएं। ये भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आज देश दुनिया के सामने 4th नंबर की आर्थिक ताकत बना है, लेकिन आप पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे तब तक आप सबके मदद से देश दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। ये आप सबके हाथ में है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर का विकास होता है। आज भारत तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य रोजगार के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर के बाहर बीती रात पुलिया से एक 4-पहिया वाहन के नीचे गिरने से हुए हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जबलपुर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत 2 दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत सिवनी मालवा तहसील के ग्राम लोखरतलाई में ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। वहीं शिवपुरी जिले के मगरौनी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ जिले के रानापुर क्षेत्र के बगई स्थित एकीकृत शासकीय हाईस्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार। वाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्ष

0: वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की है। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
6: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
2: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
6: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

फिल्म छाया का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण की बोल सलील चौधरी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म ससुराल का गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजकुमार फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमें।

0: दुल्हन एक रात की सुन में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज मदन मोहन की तर्ज थी। गीत रचना राजा मेहदी अली खां की थी और सदाबहार नगमे कार्यक्रम की श्रोताओं यही थी आखिरी पेशकश।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: ये विविध भारती है, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। खूबसूरत गीतों का ये सफर आपकी फरमाइशें और आपके पत्र, और होता है आपको बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार। तो कार्यक्रम के लिए अपने रेडियो सेट के जरा करीब आइए, पास लाइए और जरा ध्यान से सुनिए, कहीं आपके पसंदीदा गीतों में से तो कोई गीत आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम मन चाहे गीत में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने, और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। और ये पत्र आया श्रॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी। और प्रमिला गंज आलूट के हमारे श्रोता है रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता है अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चकदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित मुताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करडा रोड से कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की यह फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अम्बेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीराताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में मोहम्मद रफी की आवाज़ साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये हमारे श्रोता हैं शाहनगर करवीर जिला कोल्हापुर के बाजीराव ढेरे, संगीता और हर्षद।

ढेरे। और इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन होशियारपुर जालंधर रोड से रमाकांत शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा। और ये पत्र आया वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी, रोहित और प्रणीत की ये फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते थे राजावत कॉम्प्लेक्स से शाजापुर के हमारे श्रोता है ये मनमोहन राजावत, मधु राशि, चित्रंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, मनीषा चौधरी, ये हमारे कोलकाता के श्रोता है।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। बाबलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता इस गीत को इन्होंने पसंद किया था, प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति, यशोदीप की ये फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुचा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक, और इसी गीत को सुनना चाहते थे बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमरा और बिहार के ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा। और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

गोला बाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा नाहिद, फरीदा जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निमी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष, सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, खर्ची, ललिता, नारायण, गणेश और संजना, परी, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा, आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था श्रोता, और यही है आज के मंच है गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले, और अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: महामहती योगेंद्रायण कैसा वन है ये, हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी। चलते चलते थक गई हूं मैं, ये दिन भी देखना थे हमें।
1: आर्यवासव दत्ता, चिंतित न हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र, सोच कर कांप उठती हूँ। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावण ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वन गमन, उधर लावण ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाएं, सिहर जाती हूँ उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया, आप न होते तो क्या होता मेरा। और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासवदत्ता, मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाती योगेंद्रायण,
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है ना आपको मेरी प्रतिज्ञा, जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस्वेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
0: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
1: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगेंद्रायण नहीं बल्कि परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है।
0: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
1: देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहां व्यवस्थित अरण्यावली है।
0: हाँ?
1: मुझे लगता है वह तपोवन है, क्यों ना हम वहां चलें?
0: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
2: मार छोड़ दें, आर्य हट जाए, मार छोड़ दें।
1: आश्चर्य, यहां भी लोगों को हटाया जा रहा है, पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
2: मार छोड़े, ए आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
0: आर्य योगेंद्रराय, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा रहे
2: हैं? मार छोड़ दे।
0: देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
1: धैर्य धैर्य देवी, अपने पति वत्सराज उदयन के विजयी होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
2: मार छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
3: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
4: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं, ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
5: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
1: ये कंचुकी ज्ञानमान है, देवी श्री वासव दत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
4: जी,
1: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं, हमें बताएं लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है।
4: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
1: अच्छा, तो ये ही वो मगधराज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व जागृत हो रहा है।
6: राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें।
7: स्वागत है राजकुमारी।
8: स्वागत है राजकुमारी।
7: आर्य तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
8: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
7: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य।
0: बहुत सुंदर आश्रम है ये, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
6: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
8: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगधराज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
6: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूध भेजा है।
0: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूध भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
7: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
4: राजकुमारी की जो इच्छा।
3: आश्रम के तापस जन सुने।

0: मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
1: अरे कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
2: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
3: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
0: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
1: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में है। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
2: फिर क्या चाहते हैं आप?
1: आपने धर्मप्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती हैं।
0: चरित्र रक्षा? चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है, धन, प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन थाती की रक्षा?
2: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहें वही संपन्न हो।
0: जो आ गया राजकुमारी जी।
1: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती, जाओ अवंतिकी, देवी के समीप जाओ।
2: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका। चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
4: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
2: आओ अवंती के, हमारे साथ चलो।
5: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था ये वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीत कर सिंहासन आरूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासव दत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष्य करेंगे, और ऐसी भविष्यवाणी भी है।
1: समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
6: बहुत थक गया हूं, मध्याह्न हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं? कहां जाऊं? किधर जाऊं? अरे, ये सामने शायद तपोवन है। हाँ, तपोवन ही है। निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम। निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
0: ब्रह्मचारी पधारें। आश्रम सबका समान रूप से होता है, हम आपसे पहले यहां आए, आप हमारा आतिथ्य

0: ये इनके भाई।
1: प्रणाम मुनिवर।
0: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
2: प्रणाम मुनिवर।
3: आयुष्मान भव।
1: ब्रह्मचारी, आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
3: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं। वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावाणक ग्राम में रहता था।
2: लावाणक ग्राम में।
1: अध्ययन समाप्त हुआ?
3: नहीं तपस्विन, नहीं।
1: नहीं? फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
3: वहां वहां एक दुखद घटना घटी।
1: वो क्या?
3: वही लावाणक ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
2: स्वामी।
3: अवंतिराज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
2: मेरे स्वामी।
3: जब राजा अन्यत्र आखेट खेलने गए तब तब तब गांव में आग लगी। और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
2: क्या?
1: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
3: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण काटने को उद्यत। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
2: अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूँ, उसी के बल आज जीवित हूँ। आज भी उनके प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों

0: फिर महाराज उदय रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित है।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंती का विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: नारो अवंती के राजकुमारी, मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारिण, फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्स राज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदय सहसा उठे और
4: हाँ वासुदत्ता, हाँ वासुदत्ता।

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुमनवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुमनवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं।

0: है मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ है?
2: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासुदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासुदत्ता के साथ फंसा, यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। वासुदत्ता, आप ये शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई? क्यों चली गई?
2: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
2: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक रावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष।
0: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है। क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? चींटी की तरह, चींटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
2: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं, आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
0: प्रणाम मुनिवर।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
0: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
1: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथों ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
4: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर पधारे राजकुमारी।
5: सांध्य वेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
4: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
0: चलो कंचुकी, चेटी चलो।

0: ये रही तुम्हारी बहन।
1: अब आंटी के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
0: मैं राजकुमारी कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करे। सुना क्या कह रही है?
1: सुन रही हूँ अवंतिके। पर बताओ हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
0: ये राजगृह के महल भी सुंदर है और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
1: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
0: आज आप विशेष सुंदर लग रही है राजकुमारी।
1: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
0: अच्छा अच्छा महासेन की भावी पुत्र वधु, मैं चुप होती हूँ।
1: ये महासेन कौन है?
0: नहीं जानती। उज्जैनी के राजा प्रद्योत, असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
1: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं जाती।
0: तब किसके साथ जाती हैं आर्य चेठी?
1: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
0: वत्सराज?
1: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त हैं।
0: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
1: क्या क्या हो देवी?
0: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों?
1: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
0: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
1: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
0: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
1: अवंतिकी, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
0: मैं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
1: ओह हाँ, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं।
2: कुमारी पद्मावती की जय हो।
1: कुमारी आपके मंगनी हो गई।
0: मंगनी हो गई?
2: बधाई हो राजकुमारी।
0: हाँ धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की?
1: वत्सराज उदयन के साथ।
0: क्या वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो है?
1: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंतिके। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
0: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
1: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आदिजाति ज्ञान वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
0: ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है। मेरा मन भी यही कहता है।
2: ओ राजकुमारी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: राजकुमारी पद्मावती को विवाह मंडप में छोड़, मैं यहाँ राजगृह के प्रमद वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है। आर्यपुत्र वे भी अब पराए हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्यपुत्र को देखभाल लेने की मनोरथ से ही।
1: आर्या अवंतिका जाने कहां गई। ओ, पेंगू लता के नीचे शिला पट पर बैठी है। अरे कितनी देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
0: किस लिए चेटी?
1: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। लीजिए फूलों की टोकनी।
0: हाय, मुझे ये करना होगा। भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
1: अरे क्या सोच रही है, जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
0: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
1: ऐसे हैं जैसे मैंने कभी नहीं देखा।
0: कहना क्या सुंदर हैं?
1: धनुषवाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
0: अच्छा अब बस भी करो।
1: अरे क्यों रोक रही है मुझे?
0: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
1: अच्छा शीघ्र माला गूंथ दे।
0: वही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण?
3: जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
0: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
0: नहीं इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों
0: चेटी? राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन?
4: जल्दी करें आर्य, जल्दी करें, सुहागिनें जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही हैं।
0: हाँ लो ये माला तैयार है।
3: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली।
0: कैसा दुर्भाग्य, आर्यपुत्र भी अब मेरे पैर है।

स्वप्न वासव दत्ता, अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइलेंस लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
3: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
3: जी, हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाए गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
4: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
3: जी,
4: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
3: जी,
4: बहुत कम मिलता है। आजकल तो मिलता ही नहीं
3: जी।
4: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
3: जी।
4: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्य हो गई आज।
3: ये आपका बड़प्पन है,
4: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
3: जी
4: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
3: जी। जी,
4: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद के बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
4: जी, जी।
3: वहां तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई और वहां पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
4: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
3: अच्छा।
4: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
3: अच्छा।
4: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
3: जी।
4: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्नादा के साथ, मन्नादा जी के साथ।
3: अच्छा।
4: आए मन्नाडे जी के
3: जी,
4: साथ
3: जी।
4: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
3: जी
4: उनको असिस्ट किया।
3: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में
4: है
3: जाते हैं।
4: हाँ। जी। तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहां पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
3: अरे क्या बात।
4: मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
3: अच्छा।
4: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है
3: जी, जी।
4: बस फिर डैडी ने बहुत अपनी खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता
3: जी, जी।
4: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता डैडी कहीं वहां पीछे रह गए, बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
3: जी जी जी।
4: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे
3: जी,
4: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
3: अच्छा,
4: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर काका, किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया, उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा है।
3: जी जी जी। आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
4: जी।
3: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
4: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स है यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
3: अच्छा।
4: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
3: जी,
4: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं किसी न किसी।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे भी पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया। तो और मेरे मायके की तरफ की मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, गुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार,
1: है ना, संगीतकारों का और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो और वो आशा जैसी,
0: जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल।
1: बहुत
0: और
1: नजर,
0: आप उससे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार के साथ, जब हम अपना किसी को आइडल मानते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया।
0: आप ही का गाया हुआ सुनते
1: जी जी बिल्कुल
0: की पसंद का गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने वो हमेशा कहती थी भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी।
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर गुड्डी।
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी।
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी।
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी।
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967 हाँ, लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी।
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह।
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए और मैं भी मान गई। उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते
1: हाँ, हाँ,
0: थे,
1: बिल्कुल
0: ना ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी।
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो
1: तो
0: सकता
1: देखिए।
0: तो कुदरत ने शायद हो सकता है कि दिमाग भी की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल। तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने, पहला गाना मैंने जब गाया वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी।
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक हाँ। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात। तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही
0: है ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी। बस वहां से मैं 7 साल की थी तो,
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी,
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था,
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक हरे निवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त,
0: जी
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा,
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा,
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल्स, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था, तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी,
0: है ना, जी जी,
1: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई, तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर, उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा, अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
0: अच्छा,
1: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
0: जी बिल्कुल,
1: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
0: हाँ,
1: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
0: और सुपर डुपर हिट,
1: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे, तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को,
0: जी,
1: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है, अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है ना,
0: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने,
1: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो, अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
0: जी
1: टॉप फ्लोर पे, तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सेबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
0: जी,
1: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा गाती हो तुम, सीखती हो, तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ, मैंने कहा अच्छा तो क्या क्या गाती हो, मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो, मैंने कहा काली एक, अच्छा तो जरा सुनो सारे गम सुनाओ, दोनों ने सारे गम पंचम तक लेके गए, बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम, अरे ये तो चलेगी नहीं दौड़ेगी।
0: अरे
1: और बोले मौसी और मामा को बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
0: जी
1: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं वहीं सिखा देंगे गाना।
0: अरे वाह।
1: तो दूसरे दिन वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
0: जी जी
1: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई मेरे साथ एक और बच्ची भी उसने भी गाया है प्रतिभा बोर्डे का वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी
0: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया
1: उनको ना इंटरेस्ट प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था जहां तक मैं मुझे याद है ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी वो एक ही गाना उसने गाया बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी उन्होंने गाना सिखाया
0: जी
1: और मुझे बोला तुम हंसती हो मैंने बोला हाँ गाने में हंसोगी मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है
0: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो
1: मैंने बोला हाँ तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं बोले बस इसको पकड़ के रखना
0: बहुत सुंदर
1: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए बहुत बाद में मैं उनको साहब अंकल कहती थी हाँ और सुमन जी आई
0: जी
1: सब आए थे
0: जी
1: रमेश सिप्पी जी सब आए मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था बस सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे डर जाएंगे इनको बाहर खड़ा करो तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन म्यूजिशियंस सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन फर्स्ट टेक ओके
0: जी जी
1: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया
0: बहुत सुंदर
1: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई मौसी ने बताया उस वक्त ना बंदा के नीचे एक गाना चला था ना रफी साहब का अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
0: जी
1: ये मेरा क्या कसूर जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया
0: बिल्कुल
1: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
0: जी
1: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे
0: जी
1: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना ये वही है जाओ पैर छुए
0: अच्छा।
1: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदा के नीचे तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उसको तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए नजराना
0: वाह।
1: ये एक हमारी गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
0: जी,
1: है
0: जी
1: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
0: तो उसको तो
1: हाँ एक नजराना देते
0: प्यार
1: हैं
0: का
1: बिल्कुल और उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए
0: जी।
1: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ
0: अरे वाह।
1: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा बहुत अच्छे से सिखाइएगा ये बहुत नाम करेगी
0: क्या बात है यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ
1: ये आज महसूस होता है
0: शंकर जी के साथ हुई और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद
1: बिल्कुल बिल्कुल और पता मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी अभी एक 10 है ना बुल बुलो तारारा है ना बोलो बोलो तेरा पापा पापा पा, बोलो बोलो तारारा मम्मी बोलो बोलो तारारा पापा को मम्मी से मम्मी को पापा से प्यार है ना
0: क्या बात है

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी।
1: बड़ी
0: तो ये अनुभव कैसा रहा, और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी

0: आखिरी सांस तक
1: जी,
0: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
1: वैसे ही था
0: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा। वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
1: जी
0: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
1: जी। बहुत सुंदर।
0: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती।
1: और क्या बात है,
0: इतने क्यूटली वो हंसते थे
1: जी।
0: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है और बाल बराबर आशा का कि उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
1: अरे वाह।
0: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी, यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
1: जी,
0: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस
1: जी,
0: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
1: जी
0: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
1: जी,
0: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
1: हाँ,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
1: हर जबान,
0: और यही पूरा था ना,
1: हाँ,
0: जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस,
1: हाँ,
0: शमी कपूर जी, शंकर जय किशन, हसर जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
1: जी,
0: वही पूरा देखिए खेला।
1: बिल्कुल।
0: मुझे नहीं पता था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
1: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
0: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब, पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी।
1: जी,
0: देखिए
1: जी,
0: ये वक्त का खेला है।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
0: तो
1: कि वक्त ही है जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारी पहचान बनाता है
0: उसके आगे
1: या हमारी
0: कुछ
1: पहचान मिटा देता है।
0: एकदम
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त. थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी. और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा. अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था. मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बप्पी लाहिड़ी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप.
1: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए.
0: अच्छा.
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे
0: जी. और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए.
1: अच्छा, मंदाकिनी जी देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही
0: है.
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको एक फिल्म आई थी औलाद,
0: जी.
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी, शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था.
0: लाडला
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद. एक गाना था उसका,

0: ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है
1: जी
0: अगर मैं गलत नहीं
1: जी
0: हूँ,
1: बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना
1: गाना
0: गाया।
1: गाया
0: देखिए आप देख रही हैं मैं,
1: समय खुद को
0: हाँ
1: दोहराता है किस
0: देखिए,
1: रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक
1: बिल्कुल
0: बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत
0: ये वक्त का खेला
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: होता
1: कहा।
0: है
1: और ये आपसे
0: जी।
1: बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त
0: बिल्कुल,
1: आपको किस तरह से कहाँ
0: कैसे
1: कहाँ
0: देखिए,
1: जोड़ता
0: है
1: है।
0: ना।
1: बिल्कुल
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ऐसा होता है ना अक्सर, आपने कभी सोचा नहीं होता, कभी चाहा भी नहीं होता, और चलते चलते जीवन के किसी मोड़ पर एक शख्स कभी आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है। वो जो था बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अजनबी, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब वो अजनबी हमारी हर दुआ का हिस्सा बन जाता है। हमें कहाँ पता होता है ये जाना पहचाना सा अपना सा अजनबी हमारी जिंदगी में हौले हौले से दस्तक दे रहा है।

प्यार की शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं होती, कभी एक नजर से होती है, कभी एक मुस्कान से, और कभी उस खामोशी से जिसमें दो दिल बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। दिल की गहराइयों को समझने के लिए लफ्जों की जरूरत कहाँ, आंखें शब्दों से कहीं ज्यादा बयां करती हैं। बस वक्त लगता है समझने समझाने में।

और फिर उस खामोश इजहार के बाद की वो पहली मुलाकात भी कितनी खास होती है ना। दरअसल उस मुलाकात का इंतजार उससे भी ज्यादा खास। दिल न जाने कितने सपने सजाता है उस पहली मुलाकात के पहले, न जाने कितनी ही मुलाकातें ख्यालों में सोते जागते हो जाती हैं। उसकी आंखों का वो पहला एहसास, उसकी मुस्कान की वो हल्की सी चमक, दिल कहीं संभाल कर रख लेता है। बातें छोटी होती हैं मगर इंतजार लंबा होता चला जाता है। एक एक पल, एक एक दिन सदियों सा लगता है।

कैसे हो से शुरू हुई बातचीत कब आज मिले क्यों नहीं तक पहुंच जाती है, और इस दिल को पता ही नहीं चलता कि कब हाल पूछने से हक जताने तक का सफर तय हो गया है। उसके होने से मौसम सुहाने लगने लगते हैं, उसकी आवाज सुनकर दिन थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है, और उसकी खामोशी भी दिल के तार छेड़ देती है।

उसकी मौजूदगी जरूरी लगने लगती है, उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसकी उदासी दिल को छू जाती है, और उसके बिना गुजरा हुआ दिन जाने क्यों थोड़ा अधूरा सा लगता है। मोहब्बत शायद यही है। फिर एक दिन दिल पूछ बैठता है, क्या यही

आसपास की दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन आपके लिए जैसे उस पल में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, आप और वो। एक लंबी सड़क, बारिश की कुछ बूंदें और साथ वो इंसान। घड़ी की सुइयां कब आगे बढ़ गईं खबर नहीं होती, बस उस एक मुस्कान में जैसे पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी दुनिया सिमट आती है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही तो है, किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने से पहले उसके साथ बिताए एक छोटे से पल को पूरी जिंदगी याद रखना।

0: आज का छाया गीत संपन्न करने के लिए अनुराधा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक न कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ARTI केंद्र से ARTI ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या...
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
0: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं। अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत में जाने का, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं, तो आइए श्रोताओं अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब

0: 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटी बनती है।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावलियापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई। और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं फोरेंसिक का सामान टेंट हाइजीन किट स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश दबास अध्यक्ष रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्यराज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज नेपाल के जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की कुंसी डिसूजा कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने कुंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में चांस

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से, और अब वक्त है संदेशों का।
1: लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,

0: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट
0: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल 22 की बातें यादों के उजाले
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
2: सखी सहेली
0: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा
2: मुझे याद सब है जरा जरा
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
0: सुरीली संदली

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
1: मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार युवाओं को आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शासकीय स्कूलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ई स्कूटी का किया वितरण। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 12 लोगों की मृत्यु और अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज स्वच्छ परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना उन विद्यार्थियों के परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अध्ययन करके बीच अपने परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलने से केवल उनका जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरे परिवार और समाज का वातावरण सकारात्मक बनता है। अंतर्राष्ट्रीय उच्चतर प्रबंधन संस्थान IIWM एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी के संयुक्त तत्वाधान में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं उसके संशोधनों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों एवं संबंधित हितधारकों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन नियमों की जानकारी, क्षमता वर्धन तथा आधुनिक तकनीकी समाधानों से परिचित कराना था। कार्यशाला में अस्पतालों, क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं एवं औषधीय क्षेत्र से जुड़े 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉक्टर M.L. पटेल, निदेशक IIWM ने संस्थान की भूमिका तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं उसके संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत सतना जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नवाचारों एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मालीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन काल गणना की नगरी है, विज्ञान और आध्यात्म की धरती है। यह आध्यात्मिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करने के साथ वैदिक काल गणना की परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए

0: वैद्यशाला का भी विकास किया गया है।
1: ये कालबनंदा की नगरी भी है, ये विज्ञान की धरती भी है, ये आध्यात्म की धरती है, ये दर्शन की धरती है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित होते समय के साथ एक तरफ हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का महत्व भी रेखांकित किया, दूसरी कालगणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का एक नया मॉडल के नाते से उसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए एक ऑब्जर्वेटरी आधुनिक दृष्टि से भी बनाई है, जिसके आधार पर यहाँ पर पूरे देश और दुनिया के अलग अलग प्रकार के विद्वानों के माध्यम से हम अपने सूर्योदय के साथ समय की गणना के अलावा भी जो गणना के मूल सिद्धांत है, जब उत्तरायण दक्षिणायन या सूर्य मध्य में जब होता है तो उस समय की गणना, ऐसी कई विशेषताओं को लेकर चल रहा है।
0: केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 10 राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 5,279 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिपूर्ति की है। इसके अलावा एसएनए स्पर्श के माध्यम से 13 राज्यों के 865 करोड़ 87 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को भरोसेमंद, पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2 सड़क हादसों में 12 लोगों की मृत्यु हो गई। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में कल देर रात मां बगलामुखी मंदिर के पास ओडिशा के श्रद्धालुओं से भरी एक कार बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं एक अन्य घटना में सागर जिले में बहेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गड़ाकोटा रोड पर स्थित चनाटोरिया के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव मीट का आयोजन किया गया। राजगढ़ कलेक्टर ने कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत राजस्व कार्यों एवं अभिलेखों के संधारण की स्थिति का जायजा लिया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मुरैना में विश्व ओजोन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी की सौगात दी जा रही है। अशोकनगर जिले में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान संचालित किया जा रहा है। देवास में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज लखपति दीदियों के साथ उद्योग संवाद का आयोजन किया गया। खंडवा में गणेश उत्सव के दौरान पुलिस एवं प्रशासन ने जिले के विभिन्न विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। नीमच में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। और रीवा में आज भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित सामाजिक चिंतन विषय पर प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: Akashvani at 90.
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।

एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनवे वारे हमारे सभी भैया और बहनन खो अंशु तिलेठी की नेह और स्नेह भरी राम राम। भैया बिन्नाहरो, किसान वाणी कार्यक्रम को उद्देश्य है अपने सभी श्रोता भैया बिन्नाहरन तक, किसान भैयान तक, शिक्षित बेरोजगारन तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें पहुंचावो। सो उही क्रम में विभिन्न विषयन पे जो की खेती किसानी या कृषि से संबंधित है हम लेके आप और उनके बीच आ गए हैं। भैया हरो, सूरज की रोशनी हमारे जीवन को आधार है, एकी किरणन से हमारा जीवन संचालित होत है। इखो यदि हम सौर ऊर्जा के रूप में जाने और समझे तो जा हमारे लाने बहुत उपयोगी सिद्ध होत है। कैसे? सबसे बड़ी जो समस्या आजकल है पर्यावरण। हम सौर ऊर्जा को जितनो ज्यादा उपयोग कर हैं तो हम पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। ये बात को ध्यान में रख के किसानन को सौर ऊर्जा से जोड़वे के लाने और उनकी आय बढ़ावे के लाने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिये हम पीएम कुसुम योजना के नाम से जानत हैं। अच्छा भैया बिन्नाहरो, ई योजना के अंतर्गत बंजर या खाली जमीन पे 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं जिसे उत्पादित बिजली को डिस्कॉम बेच के किसान मुनाफा कमा सकत हैं। डीजल पंपों की जगह स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करो जाते हैं जी पे सरकार अनुदान प्रदान करत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जय भैया बिन्नाहरो की मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों सौरीकरण भी ए योजना के अंतर्गत आते हैं। जा तो हमने बात करी ई योजना के घटकन की, अब बात करते हैं ई योजना से होवे बारे लाभन की। राज्य सरकार 30% से लेके 90% तक की आर्थिक सहायता राशि देते हैं, बाकी 40% हितग्राही स्वयं अथवा बैंक लोन के माध्यम से ले सकत हैं। किसान भैया हरे अतिरिक्त बिजली को उत्पादन करके आमदनी प्राप्त कर सकत हैं। ई योजना के माध्यम से फसलन की सिंचाई के लाने एक सबसे बड़ो लाभ जो हमें प्राप्त होते हैं वो है कि ई के माध्यम से हमारी डीजल पे निर्भरता कम हो जाते हैं। तो भैया हरो, हम तो जय कहें कि पीएम कुसुम योजना को लाभ लो, सौर ऊर्जा से जुड़ो और अपनी खेती में बिजली से संबंधित खर्चा को कम करो, संगे संगे प्रकृति और ई पर्यावरण की रक्षा करो। भैया हरो, कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं और अब आपको हम सुनवाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल में मृदा संरक्षण एवं संवर्धन तथा फसल उत्पादन में मिट्टी को महत्व विषय पर विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों से साक्षात्कार पर आधारित जब बातचीत एक स्थल रिकॉर्डिंग है। ये स्थल
3: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को नमस्कार। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। आज हम हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल में। यहाँ पर हम विशेषज्ञों से मृदा संरक्षण एवं संवर्धन तथा फसल उत्पादन के लिए मिट्टी के महत्व पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम मिलते हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनोरंजन मोहंती से, उनसे संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हैं।
4: किसान भाई नमस्कार। जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है जो हम आईएसएस के नाम पे जाने जाते हैं इंडिया में और मध्य प्रदेश में, वो बताना चाहूंगा ये जो संस्था है ये 1988 से ही हाल में स्थापित है और ये संस्था जो है मृदा के बारे में, मृदा के स्वास्थ्य के बारे में अनवरत और अनगिनत काम कर रहे हैं बहुत। और 1988 से हम किसान भाइयों के लिए जो शोध करते हैं वो शोध के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला तो है कि मृदा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हम सॉइल हेल्थ बोलते हैं। ये जो अगर आपका मिट्टी या मृदा अगर स्वस्थ नहीं रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। स्वस्थ मिट्टी एक स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ फल फूल और सब्जियां से लेके जो आपका गेहूं सोयाबीन जो भी आप कल्टीवेट करते हैं इसका जो पैदावार होता है और उसमें जो सारे गुण रहना चाहिए प्रोडक्ट में जो भी प्रोड्यूस होता है जो भी हमारा खेत से निकलता है उसमें भी जो गुण होना चाहिए चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो वो सब चीज़ अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होता तो वहाँ उसमें नहीं आता है। इसीलिए ये जो हमारा संस्थान है इसके लिए शोध करते हैं हमारा वैज्ञानिक है इधर जो चाहे आप बोले कृषि भौतिकी हो जो हम सॉइल फिजिक्स बोलते हैं सॉइल केमिस्ट्री और सॉइल बायोलॉजी और एनवायरमेंट सॉइल एनवायरमेंट में हम रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च से हम ये किसान भाइयों को वो बताते हैं कि देखिए अगर आपका मिट्टी का संरक्षण करना है जो सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं उसको अगर आप रखते हैं तो क्या आप मिट्टी का ऊपर भाग जो टॉप सॉइल बोलते हैं उसको आप बचा के रखने से क्या फायदा होगा, क्योंकि सॉइल हेल्थ जो है ना उससे जुड़ा हुआ है। जो मिट्टी का जो ऊपर भाग है जो आप बहुत बारिश हुआ बह जाता है उसको आप बचा के नहीं रखेंगे उसमें सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं जैविक कार्बन भी चला जाता है जो हम बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो बोलते हैं जैविक कार्बन उसका अगर कमी मात्रा में पाया जाएगा आपका सॉइल सिक बीमार हो जाता है जो हम बोलते हैं ना कि आप बीमार हो जाते हैं अगर कोई चीज का कमी आपका खून में दिखाई देते आप टेस्ट करते जांच करते तो कैसे पता चलेगा जब आप टेस्ट करेंगे सॉइल का तब आपको पता चलता है कि हमारा मिट्टी में ये सारे चीज का कमी है। तो इसको पर हम शोध करते शोध करने के बाद हमने टेस्ट करा दिया पता चल गया इसमें नाइट्रोजन कमी है या नहीं है फास्फोरस है जिंक है कि नहीं है फिर किसान भाइयों को बताते हैं कि इसमें ये चीज आप अप्लाई करिए इसमें ये चीज को कमी है आप ये दवाई जैसे हमको डॉक्टर लिखता है हम उनको बोलते हैं कि ये चीज का आपको एप्लीकेशन करना है। तो ये चीज हो गया कि मिट्टी का आपका जो संरक्षण की बात की है उसके बारे में। सिमिलरली हमारा जो केमिकल जो न्यूट्रिएंट है उसका भी बचा के रखना भी जरूरी है उसके लिए भी हमको उसी हिसाब से हमको फर्टिलाइजर जो खाद है अप्लाई करना पड़ता है। हम खाली केमिकल फर्टिलाइजर क्यों अप्लाई करें खाद अप्लाई करें उसमें भी रासायनिक खाद के साथ अगर हम ऑर्गेनिक जो बोलते हैं ना जैविक खाद उसमें चाहे आपका कंपोस्ट हो बायो फर्टिलाइजर हो या फार्म एड मैन्यूअर जिसको प्रोडक्शन करते हैं वर्मी कंपोस्ट की बात आजकल चल रहे हैं उसी वो सब चीज़ अगर मिला के करेंगे तो हम सॉइल हेल्थ जो बोलते हैं ना मिट्टी का स्वास्थ्य जो है हम उसको बढ़ा सकते हैं।
3: किसान भाइयों मृदा संरक्षण बेहतर उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है इसके लिए प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस चौधरी से जो यहां पर किसानों के प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं।
5: मैं डॉक्टर आर एस चौधरी हूं मैं यहां प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में और हम किसानों के लिए खासकर मृदा के संरक्षण के लिए कई तरह की ट्रेनिंग देते हैं और यहां तक कि हमारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी किसानों को हम बताते हैं डेमोंस्ट्रेशन करके कि मृदा का संरक्षण कैसे करना है। पहली बात तो हम बस सिर्फ ये बताते हैं कि सबसे पहले आपने जो आपका बरसाती जल है उसको दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलने पर मजबूर करना है रोकना है। कैसे करोगे कंटूर मेढ़े बनाएं जैसे मेढ़े बनाते हैं आप ढलान के आर पार। दूसरा कंटूर कल्टीवेशन करनी है ढलान की दिशा में नहीं ढलान के आर पार आपको हल चलाना है। इसके बाद आप अपनी रिचार्ज स्ट्रक्चर अपने खेतों में जहां पर खेती का इस्तेमाल नहीं होता है आपका लैंड वहां पर रिचार्ज पानी के रिचार्ज के लिए स्ट्रक्चर में पानी को रोकें आपके इस्तेमाल के लिए और रिचार्ज के लिए पानी बचेगा फार्म पॉन्ड में आपके तालाबों में पानी हो। इसके अलावा एक जो हमारे यहां योजना चल रही है प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का है संरक्षण खेती का। ये संरक्षण खेती इसीलिए है कि हम जो है अपनी मृदा को अपने न्यूट्रिएंट को अपनी कार्बन को संरक्षित कर सकें जमीन के अंदर। इसमें तीन चीजें प्रमुख हैं कि आप जो नरवई है उसको जला देते हैं आमतौर पर जला देते थे अब किसान भाइयों आपने नरवई को जलाना नहीं है। ये नरवई जो है आपके खेत से जो मिट्टी का क्षरण होता है मिट्टी और पोषक तत्व बह जाते हैं उनको बचाती है और आपके जो खेत में रहने वाले मित्र जीव हैं उनके लिए खाना होता है ये और ये कार्बन जो है इसके अंदर वो मृदा की कार्बन को बढ़ाती है और ये मृदा में जब कार्बन ज्यादा अच्छी होगी तो आपके जल का और आपके पोषक तत्वों का जो है संग्रहण मिट्टी के अंदर ज्यादा रहेगा जो धीरे धीरे आपकी फसल को उपजाऊ बनाता है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पैदावार ज्यादा करता है। तो इस तरह कई तकनीकें हैं जिसको हम किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद अपना मृदा का संरक्षण करने में हमारे किसान भाई सक्षम रहते हैं।
3: सर जैसे आपने बताया कि इस तरह से जो है हम मृदा का संरक्षण करें, लेकिन यदि कई किसान भाई ऐसे हैं जो दूर दराज रहते हैं, उनको जो है यदि यहाँ प्रशिक्षण लेना हो, इसके बारे में समझना हो, तो वो क्या यहाँ प्रशिक्षण वगैरह देते हैं आप कुछ?
5: जी, हमारे यहाँ छोटे छोटे अंतरालों पे इस तरह के प्रशिक्षण जो है सारा साल भर चलते हैं, और किसी न किसी तरीके में जितनी हमारे यहाँ परियोजनाएं चल रही हैं, हर परियोजनाओं में मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में, मिट्टी के संरक्षण के बारे में, इसके अंदर रहने वाले मित्र जीवों के संरक्षण के बारे में और इसके पोषक तत्वों के संरक्षण के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, कैसे इन सारी चीजों से अपनी मिट्टी को बचाना है, इसके बारे में हम कुछ अंतरालों पर किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। यहाँ बुलाकर भी और उनके गांव में जाके भी कार्यशालाएं करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं।
3: कभी कभी हमारे किसान भाई जो है खेत में जो कचरा होता है या जो भी जो बचे हुए अवशेष रहते हैं उनको जलाते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह है, इसके बारे में हम किस तरह से किसानों को अवेयर करते हैं?
5: हम किसान भाइयों को कई वर्षों से बार बार हर प्रशिक्षण में यही बताते हैं कि जब आप खेत की निर्वाही को जलाते हैं, अवशेषों को जलाते हैं, तो ये सारे जो है अवशेष, इसके कारण जो हमारे मित्र जीव हैं वो 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की सतह तक सारे मर जाते हैं। केंचुए हुए, आपके मकड़े हुए, चींटियां हुई, जो हमारे खेती के लिए बहुत जरूरी है, लाभदायी मृदा के स्वास्थ्य के लिए, वो सब मर जाते हैं। प्रदूषण होता है वातावरण में जाके, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, मोनोऑक्साइड जाती है, दूसरी गैसें वातावरण में जाती हैं जो हमारे जलवायु परिवर्तन में सहायक होती हैं, गर्मी बढ़ती है और फसलों का उत्पादन कम होता है। तो इससे मिट्टी के न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, कार्बन और अन्य चीजें जो है वो सारी की सारी वो भी मिट्टी से धुल के चली जाती है। तो इसलिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप हमें हमारी बात मानिए और अपने नरवई को मत जलाइए, इसको खेत में ही संरक्षण, खेती के द्वारा जो हमारे जरी हैं, जो हमारी मशीनें हैं, नोटिल सीड ड्रिल है, हैप्पी सीड है, इन मशीनों के द्वारा आराम से आप खेत में ही अपने नरवई को मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्तर पे मैनेज करते हैं और फायदा लीजिए, वातावरण को बचाइए, अपनी मिट्टी को बचाइए।
3: अब हम बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद झा से। पोषक तत्व प्रबंधन से लागत में कमी आती है और उत्पादन के साथ ही आय भी बढ़ती है, तो आइए जानकारी लेते हैं।
6: मैं डॉक्टर प्रमोद झा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक मनुष्य को विभिन्न तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधे को भी तकरीबन 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 17 पोषक तत्वों में कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। साथ में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की हमें मेजर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम। लेकिन किसान भाइयों, इनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की अगर जो कमी हो जाए तो हो सकता है कि हमारी जो फसल की पैदावार हो वो सही पैदावार हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप कम से कम 3 वर्ष में एक बार अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर से करवाएं। जब आप अपनी मिट्टी की परीक्षण कराते हैं तो आपको 2 बातों का पता चलता है। एक यह कि हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व की कमी है। दूसरी इस बात का पता चलता है कि कौन सी पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। जिस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होगी उसे हमें डालने की आवश्यकता नहीं होगी, और जिस पोषक तत्व की मात्रा की कमी होगी उसे हम अपने खेत में डाल सकते हैं। तो इससे किसान भाई क्या होगा कि हमारी जो लागत है कृषि में वो कम होगी। खास करके हम विगत कई वर्षों से अपने खेत में जैसे डीएपी का प्रयोग करते आ रहे हैं, और किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके लिए आप डीएपी डालते हैं, इसका मृदा से कोई ह्रास लॉस नहीं होता है या मिट्टी में ही बना रहता है, लेकिन अनुपलब्ध मात्रा में, अनुपलब्ध के फॉर्म में ये मिट्टी में मौजूद रहता है। तो इससे क्या होता है, जब हम विगत कई वर्षों से डीएपी को अपने खेत में डालते

0: चौथी जो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप क्या करें पोषक तत्व का प्रबंधन में, जो सबसे जरूरी बात है कि हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अब ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्यों अच्छी होनी चाहिए किसान भाइयों, ऐसा है कि हमारे अगर जो हम अपने खेत से एक चम्मच मिट्टी लेते हैं तो उसमें लाखों की संख्या में, इवन करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे मित्र होते हैं, बट इनके भी जीवन यापन के लिए उन्हें कार्बन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे तो इन जीवाणुओं का रहना हमारे खेत में अत्यंत आवश्यक होता है, और ये जीवाणु तभी हमारे खेत में रहेंगे जब हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होने से न केवल जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, बल्कि जो हमारा फर्टिलाइजर है, जो यूरिया आप डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए भी, ये पोषक तत्व के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये हमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसे भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यह कहना है कि हम अच्छी कृषि पद्धति को अपना के हम अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं। इसके लिए हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं कि रासायनिक खाद के साथ साथ हम क्या करें, जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरित खाद है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। जब इस प्रक्रिया को हम बार बार अपनाएंगे तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो जाएगी, और जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी जो भूमि की उर्वरता है वह स्वतः अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो मूल मंत्र है कि हम अपने मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ा सके उतनी ही अच्छी होगी। इसके लिए हम संरक्षित खेती भी कर सकते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन जो मैंने कहा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैसे आपके गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट, इनको हम डाल सकते हैं।
1: किसान भाइयों, खेत की मिट्टी एक जीवित इकाई मानी जाती है। इसमें अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी बनाए रखते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, डॉक्टर जे के ठाकुर हमें बता रहे हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जे के ठाकुर है और मैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ, और मैं मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ। मिट्टी एक जो है वो जीवित निकाय है। अगर हम मिट्टी को देखते हैं तो उसमें एक ग्राम मिट्टी में करोड़ों जीवाणु हो सकते हैं, और ये जीवाणु जो है वो मिट्टी में बहुत सारी जो क्रियाएं होती है उसका संचालन करते हैं। जैसे कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका रूपांतरण करने का कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को वातावरण से लेकर पौधे को पहुंचाने का भी काम करते हैं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वातावरण में उपलब्ध नाइट्रोजन को लेते हैं और वो पौधों को उपलब्ध कराने के, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, जिसको हम लोग जैसे राइजोबियम और लेग्यूम के साथ, जो दलहनी पौधे के साथ उनका जो संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधे को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में होते हैं, वो मिट्टी में उपलब्ध तो होते हैं परंतु ऐसी अवस्था में वो होते नहीं है कि पौधे को उपलब्ध हो पाए। तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो इन पोषक तत्वों को घुलाकर पौधे को प्राप्त करवाते हैं, तो ये दूसरा काम भी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु करते हैं। बहुत सारे जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो पौधे को कीटों और रोगों से बचाने का, जिनको हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं, तो वो जीवाणु जो है वो पौधे को बचाने का भी काम करते हैं, रोगों और कीटों से भी बचाने का कार्य करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने। अब महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।

तो भैया हरो जाहती स्थल रिकॉर्डिंग जी में हमने जानो मृदा स्वास्थ्य और मृदा महत्व के बारे में इमे हमें स्थल रिकॉर्डिंग में सहयोग मिलो तो महेश सोनी भैया को भैया हरो जानकारियां हो गई खूब काम की बातें हो गई और हमने आपको सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताओ अब तनक मनोरंजन कर लेते थे सो हम लेके आ गए हैं बहुत ही नौनी सी गणेश वंदना जी एक गांव है बलराम रेकवार में तो सुनत है जा गणेश वंदना

0: भैया हरो, अब आपने जो गणेश वंदना सुनी और गणेश जी की हमने स्तुति करी, कैसे घर घर में गणेश जी विराजे हैं, सो मन आनंद से और भक्ति भाव में डूब भाव है हमाओ। कार्यक्रम में आगे बढ़े भैया हरो, और एक और जरूरी बात आज हम आपोरन से करन चाहू थे, कृषि से संबंधित एक और जानकारी हम आपोरन के लाने लेके आए हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति जा एक ऐसी समिति है जो ग्राम स्तर पे काम करवे वाली सबसे छोटी और बुनियादी सहकारी ऋण संस्था के रूप में जानी जात है या काम करत है। जा समिति सीधे तौर पे किसानन से जुड़ी भई होत है। जा भारत की तीन स्तरीय सहकारी ऋण संरचना की सबसे निचली और अंतिम कड़ी है। अगर इकी संरचना की हम बात करें तो तीन स्तर प्रणाली में जा कृषि साख समिति काम करत है। पहलो सबसे ऊंचो स्तर राज्य सहकारी बैंक, दूसरो मध्य स्तर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरो निचलो स्तर प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समिति जा सीधे ग्राम पंचायतन से जुड़ी रहते है। इके प्रमुख कार्य हम आपोरन को बताए देते है, ऋण वितरण करवो इको एक प्रमुख कार्य है, जिमे किसानन को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लाने कृषि ऋण उपलब्ध कराओ जात है। दूसरो जो है कृषि सामग्री, किसानन को उचित दामन पे बीज खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराए जात है कृषि सामग्री के रूप में। तीसरो भैया हरो उपकरण और भंडारण में भी जा मदद करत है, किराए पे कृषि मशीनें लेने होए, उपकरण लेने होए और फसलन के भंडारण में सहायता के लाने भी जा समिति काम करत है। और संगे संगे भैया हरो समर्थन मूल्य पे खरीदी और कई जांगन पे इन समितियन के जरिए समर्थन मूल्य पे धान या गेहूं जैसी फसलन की खरीदी को कार्य भी करो जात है। तो जा हती हमारी प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में एक जानकारी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह के आधार पे पशुपालन में सलाह दी जात है कि वर्षा ऋतु में पशुअन में संक्रामक रोग होवे की संभावना रहत है, सो पशुअन को संक्रामक रोगन से बचावे के लाने आवश्यक सावधानी बरते, पशुअन को दूषित चारो ना खिलाएं, दूषित पानी सोई ना पिलावे और इस समय अधिक मात्रा में हरो चारो खिलावे से बचे, कैसे इसे अफरा रोग को खतरा बढ़ जात है। तो जा हती हमारी आज की मौसम पे आधारित जानकारी। अब हम आपको बताए देते हैं इंदौर कृषि उपज मंडी के भाव दिनांक 17 सितंबर के अनुसार। गेहूं को न्यूनतम 2550 और अधिकतम गौ 3126, सोयाबीन को 5495 न्यूनतम मूल्य रहो और अधिकतम रहो 6250, चना को न्यूनतम मूल्य रहो 5510 और अधिकतम मूल्य रहो 6600, और मूंग को न्यूनतम मूल्य रहो 6500 और अधिकतम मूल्य रहो 7330, संगे संगे सरसों को 4315 और मटर को भी 1705 पे मूल्य स्थिर रहो। तो जी हते इंदौर कृषि उपज मंडी के अनुसार 17 सितंबर के मूल्य। तो भैया हरो अब कार्यक्रम में चलवे की ब्रियां हो गई है। अब आज्ञा दो अंशु तिलैठे को और स्वीकारो हमारी नेह स्नेह भरी राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: वाणी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
2: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
3: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
4: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना, और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग ढाई दशक कहें, तीन दशक कहें, तीन दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं, वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद मनोज जी।
4: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद।
4: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
6: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
4: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
0: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
4: जी।
0: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत। और जिस विशेष बात रखी जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहां पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
4: बिल्कुल।
0: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
4: जी।
0: अब 20 साल उसके रह गए, विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
4: जी।
0: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहाँ की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
4: जी
0: उसको कर रहे, क्योंकि सीधी बात है जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
4: शुभमय, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है, उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
5: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
4: जी,
5: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला, इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना के में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए, आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारे स्कीम में ये जो मॉनिटर आया है, ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है ये
7: जी।
5: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया, सिंपल योजनाएं लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए
7: जी। बहुत अच्छी बात की शुभमय कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर के भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगे, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ, इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
0: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे
7: जी जी, जी।
0: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा
7: जी।
0: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक आ गई इस तरह की, विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की, जनधन चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन आधार मोबाइल, तीनों को जोड़ के आपने तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे, अगर आप कभी भी देखें जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के
7: जी,
0: जो आम नागरिक हैं, और सबको उनको एनकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है आपका
7: जी जी।
0: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है, अब उसके बाद अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें UPI QR कोड का जो इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए
7: जी।
0: शुरुआत में इसके ऊपर काफी आलोचना भी हुई, आपको याद होगा,
7: अच्छी
0: अच्छा आलोचना ये हुई थी कि भाई इस तरह जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता
7: जी।
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास QR कोड है
7: जी।
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से आप शुभ जो कि आर्थिक विशेष ज्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में UPI को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है अब
7: जी।
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं होता था
7: जी।
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
7: क्या शुभ मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, डीबीटी किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को, यानी काला धन सफेद धन, धन धन है लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें डीबीटी कैसे कहले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ। और एक बड़ी अच्छी बात के भी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं, किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
5: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखे सीएजी का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है। हर साल का सीएजी का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं, बड़ा नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गाँव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसमें हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा 7 ट्रिलियन हो जाएगा और जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपए इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए
7: जी।
5: उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी
7: जी,
5: जनधन वाली योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में हर 15 दिन में जैसे भी उसका शेड्यूल है
7: जी।
5: उस तरह से वो तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर जो एक बार ही सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी इस पर भरोसा आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है जी।
7: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, शुभ मैं कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, बेशक आमदनी के आंकड़ों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गाँव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
0: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे ऐसा शुरुआत में थी लेकिन वो चीज बदली है। फिर भी 40% के आसपास मान के चलिए 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से। जो शुभ भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
7: जी
0: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखें स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरा परिवार को सोचती है, ये नहीं कि पुरुष नहीं सोचते हैं लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है। तो वो एक फर्क पड़ा और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं तो वो एक बदलाव क्योंकि जो हम विकास ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा एक समाज की बदलाव भी आएगा जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा सोच में बदलाव नहीं आएगा अगर ये समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा
7: बिल्कुल
0: तो इस तरह की कल्याणकारी योजना और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है इस सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच
7: जी
0: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था ये तो हमारा काम नहीं है फलाने मंत्रालय का है तो सबको लेकर सम्मिलित कर कि लक्ष्य आधा है सबने कि ये करना है आपने तो चाहे ग्रामीण में हो तो तमाम सारी जैसे बात हो रही थी कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी लेकिन उसको जैसे कहते टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करे और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाए मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक स्वच्छ पानी
7: जी
0: और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं इस सब के भी काम हो रहा है ठीक है कास का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा वो क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे लेकिन कुल मिलाकर दबाव सब पे है
7: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे गाँव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको
5: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो

0: 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्था करना वो मुश्किल था क्योंकि एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते हैं महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वो आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशंस किए जाएं। जी इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
1: जी
0: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए।
1: जी
0: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज है और शिक्षणीय चीज भी है। जी
1: श्रोताओं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं बुनियादी परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहाँ जाना कठिन था अब वहाँ सहजता से आप पहुंच सकते हैं और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
2: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास के और कार्यक्रम में उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है।
1: जी जी जी
2: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 70 के ऊपर 70-75 के आसपास क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है वो भी, और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए सेवा तो की है लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है अब उसमें अलग जो दूसरा आभा स्कीम है आपका आयुष्मान भारत स्कीम है तो ये सब सम्मिलित करके कर रहे हैं और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में एक आपके कोई समस्या आती है कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है आप वो सरकार को कोई खर्च नहीं मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए स्वास्थ्य केंद्र है और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए कई सारे टाउन टीयर टू सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं और जो दूसरे जैसे पोर्टल जैसे आभा की बात किया उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ है और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया तो वो भी डिजिटाइज करने जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा तो कहीं पे भी बैठे हो चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
1: यहाँ पर शुभ मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है इस पर थोड़ा रोशनी डालें और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
0: देखिए बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है जितना जितना जिस तरीके का हम अगर हम हर कोई भी बिंदु अगर ले जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं जैसे पीएम आयुष्मान भारत
1: जी।
0: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब ये है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगह में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना जिसे कहते हैं मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हम ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक जिसे कहते हैं एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन स्रोत इन चीज इन इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में
1: जी जी
0: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इस करने के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उन्हें समा चुका है। यही है स्कीम्स के जिसे कहते हैं हम सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्य कार्यक्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स के सबसे बड़ा खूबी कि गवर्नमेंट का जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारे स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है। और ये सब बहुत बड़ी जैसे मैं कहूंगा फेस चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड
1: जी। यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
2: देखिए सबसे समस्या जो भी कहिए चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाए
1: जी,
2: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकास विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है, एक लक्ष्य साधा है 2047 तक जो 100 साल भारत का आजादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी ये तो शुरुआत से तो जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा पुरानी बात है, लेकिन उसके आगे और कई सारी चीजें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका कैसे, तो कई सारे चीजें हैं। तो वो विकास जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे है, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जैसे है कि लास्ट में जैसे एक अगर कहें अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं लेकिन अंत में जाके सब उस टेप को तो चाहते हैं, या तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है उसके लिए जो है, जो सोच बदलने की बात आई थी जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है वो पहले है
1: जी जी जी
2: सिर्फ सोच ही बदलाव
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल।
2: ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते चुनौती है लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचे
1: बिल्कुल शुभ प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है तेल की दाम बढ़े लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई हम बेहतर थे दुनिया को हमने दिया यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया क्योंकि हम बड़ी विविधता से चतुराई पूर्वक समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है जो नीतियां बन रही हैं वो इंप्लीमेंट हों और वो साल दर साल इंप्लीमेंट होते रहे उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं
2: मनोज जी आपने जो बात कही बहुत अहम भी है और इस पे देखिए जैसे इससे पहले वाकई बात कही सोच बदलने की बात है और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते हैं एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय का हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे सबके जो धन है आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं लेकिन जब एक योजना बनती है मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी अब सिर्फ घर नहीं मिलता है मतलब ये है कि ढांचा दे दिया उसमें पानी की सुविधा बिजली की सुविधा पाइप गैस की सुविधा तीन चार चीजें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें और वो घर किस नाम पर जाएगा महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन घर की महिला तो एक उनको एम्पावर किया आपने अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार की आवंटन है पानी घर घर जल योजना अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रही लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते तो एक ही सोच बदली कि वे कार्य करें
1: श्रोताओं एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं ये जमीन पर दिख रहा है हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही संपन्न होता है आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं
2: धन्यवाद मनोज जी
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं
4: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण

लाइफ इन अ मेट्रो ये फिल्म का नाम था। जेम्स की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रीतम का संगीत। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की।

0: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
0: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
0: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

0: चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
3: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके दिखाया।
2: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
4: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
2: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
5: I think close to 8 cargo planes have arrived.
6: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में

0: परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna-Ukai-Songarh section of Western Railway. Two-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मशाल फिल्म के इस गीत को सुनकर आपको चार फुटपाथी आवारा लड़के याद जरूर आए होंगे, जिसमें अनिल कपूर भी थे और एक थे गुलशन।

गुलशन ग्रोवर का नाम जब भी लिया जाता है तो अक्सर बैडमैन की उनकी इमेज को ज्यादा उभारा जाता है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि उन्होंने हर कैरेक्टर को एक नया गेटअप दिया है।

इसने मचा।

गुलशन ग्रोवर मध्यम वर्गीय परिवार से और उनका बचपन दिल्ली में बीता। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक्टिंग का शौक उन्हें लग चुका था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनके इस शौक को हवा मिली और उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर कई नाटकों में अभिनय किया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद गुलशन ग्रोवर मुंबई की ओर अपना रुख कर चुके थे और यहां आकर उन्होंने फिल्मी ख्वाबों को फिल्मों में अभिनय के जरिए हकीकत में बदलने की ठान ली।

मुंबई में एक्टिंग स्कूल में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और जब तक इंडस्ट्री में काम न मिला तब तक अन्य छात्रों को बतौर टीचर उन्होंने एक्टिंग के गुर भी सिखाए। उनके स्टूडेंट में उस समय संजय दत्त भी थे। जब सुनील दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को लेकर फिल्म रॉकी लॉन्च की थी तो उसने संजय दत्त के दोस्त की भूमिका के लिए उन्होंने गुलशन ग्रोवर को ही सिलेक्ट किया था, यानी गुलशन ग्रोवर की पहली फिल्म थी रॉकी।

गुलशन ग्रोवर शुरू ही से अपनी योग्यता को जानते थे, इसलिए उन्होंने हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए खुद को तैयार किया। हम पांच में उनकी एक्टिंग देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी ने निर्माता निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म अवतार के लिए गुलशन ग्रोवर को रिकमेंड किया और बाद में सिप्पी फिल्म्स की सदमा और एफसी मेहरा की फिल्म सोहनी महिवाल में गुलशन ग्रोवर ने अपनी अदाकारी की मिसाल कायम की।

गुलशन ग्रोवर ने फिल्मकार महेश भट्ट के साथ भी काम किया। फिल्म अर्थ में गुलशन को महेश जी ने छोटी सी भूमिका दी थी, लेकिन बाद की फिल्मों में गुलशन के भीतर के कलाकार को उन्होंने नए अंदाज में पेश किया। इसकी मिसाल थी फिल्म सर। यही नहीं, सुभाष घई ने भी गुलशन ग्रोवर को मौका दिया और पर्दे पर एक अनोखा बैटमैन पेश किया।

नहीं कोई मुझे सलाम, लेता नहीं कोई मेरा नाम, दस को मैं

यूं तो गुलशन ग्रोवर ने हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों में काम किया, जिसमें खास हैं साउथ की फिल्में। लेकिन बॉलीवुड के इस बेहतरीन अदाकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मन, यूके और हॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने बखूबी काम किया है। फिल्म जंगल बुक ने भी गुलशन ग्रोवर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। फिल्म मारी गोल्ड, जिसे मेरी गोल्ड भी कहा जाता है, इस फिल्म में सलमान खान के साथ उन्होंने एक नया किरदार पेश किया है। हालांकि सलमान के साथ गुलशन ग्रोवर ने चंद्रमुखी और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी काम किया था।

दोस्तों, गुलशन ग्रोवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनके पहले सईद जाफरी, कबीर बेदी और परसिस खंबाटा ने भी हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है।

दोस्तों आपको याद होगा कि गुलशन ग्रोवर ने यूं तो कई फिल्मों में और भी कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन सन 2006 में रिलीज गैंगस्टर, 2010 में रिलीज हुई फिल्में हैं नॉकआउट और प्लेबैक, 2011 में आई एम कलाम और 2012 में एजेंट विनोद में आपने उनका अभिनय जरूर देखा होगा। और फिल्म एजेंट विनोद के बाद

0: अभी गुलशन ग्रोवर की अभिनय यात्रा बदस्तूर जारी है। दोस्तों आपने इन्हें फिल्म राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट राजा और यारियां फिल्मों में भी देखा होगा। ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटी बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख

0: भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari.